0: यहाँ के समाज की महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर किस तरह की चुनौतियां हैं?
1: वो क्षेत्र ही पूरा बुनियादी सुविधाओं से वंचित था, इसलिए किसी को भी आना और वो जैसे डिलीवरी के लिए आना है या कोई बच्चा बीमार है या बार बार, अभी तो हम इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की बात करते हैं कि भाई अस्पताल में डिलीवरी हो सभी महिलाओं, लेकिन उस समय ये सब संभव ही नहीं था क्योंकि उन तक वो बात पहुंचती ही नहीं थी, उनको वो समझ में भी नहीं आती थी। अच्छा, वो डिलीवरी की अगर कोई महिला है, मतलब प्रेग्नेंट गर्भवती महिला है, तो उसको

0: थी उनको वो समझ में भी नहीं आती थी। अच्छा वो डिलीवरी की अगर कोई महिला है मतलब प्रेग्नेंट गर्भवती महिला है तो उसको 6-7 घंटा चला के लाना मतलब वो खुद पैदल चल के नहीं आएगी, यानी उसको तखत खटिया पर डाल के वैसा सब लाना है तो उसके लिए बाकी लोगों का जुगाड़ करना पड़ता है। फिर अगर वो बाकी लोगों का जुगाड़ करना है तो उनको भी कुछ देना पड़ता है कभी कभी, कम से कम दाल चावल दे दो तब जाके लोग तैयार होते हैं। तो ये सभी दिक्कतें हमको धीरे धीरे समझ में आई तो हम लोग महिला चेतना शिविर जो लेते थे सब जा जाके बता के हमारी दो दो जो बहने थी उनको हमने प्रशिक्षित करके ऐसे हम 8 सब सेंटर चलाए और उसके आजू बाजू के 15-16 गांवों में ये बहने जाती थी वहां पर ये सभी बातें बताती थी। उसके कारण ये बात हुआ कि जल्द से जल्द पेशेंट को लाना है, बारसूर ले जाना है और ठीक ठाक करना है।
1: डॉक्टर रामचंद आपको कैसा अनुभव रहा, आबूझमाड़ क्षेत्र में जब आप गए तो सबसे बड़ा चैलेंज जागरूकता ही था, सबसे बड़ी चुनौती लोगों को जागरूक करना ही था स्वास्थ्य के लिए?
2: जागरूक करना ये सबसे बड़ी बात है, वो कि हमको जो बीमारी आई है वो बीमारी ठीक हो सकती है ये इनके दिमाग में नहीं है। तो बीमारी है तो शरीर है तो बीमारी रहती ही जाएगी, ये कौन सा बड़ी बात है। अरे लेकिन ये बीमारी तो ठीक हो सकती है। तो एक पेशेंट को लाए थे तो बोला कि 6 महीना हो गया, 6 महीने से बीमार है। तो बीमारी आबूझमाड़ से था और बारिश के दिनों में वो ला रहे थे तो गुडरा करके एक नदी है वो नदी पार करके फिर इंद्रावती नदी पार करके उस पेशेंट को लाया। तो मैं बोला भैया मैं इसमें ही तो इतना बड़ा प्रॉब्लम था कि ये दोनों नदियों में तो आदमी बह जाता है, इसमें बच करके यहाँ आया है और उसको डायबिटीज विथ ट्यूबरकुलोसिस विथ जॉन्डिस ऐसे 3 बीमारी थी उसको उस पेशेंट को। तो मैंने देखा तो मैं बोला अरे भैया ये तो बहुत ज्यादा है, सीरियस केस है ये, इसको कैसा रखेंगे। तो वो फिर पेशेंट को हम लोगों ने जगदलपुर ट्रांसफर किया, पेशेंट ठीक होके आ गया। आबूझमाड़ में इसका हम लोगों ने अभी भी दर्शन कर रहे हैं, अभी भी कुपोषण का कार्यक्रम हम लोग ले रहे हैं ना। तो बच्चों को 10 दिन का चिक्की देने के बाद 3 दिन के बाद जाते हैं तो पूरी चिक्की खत्म हो गई, कौन खाया। तो बोला हमारा एक साला है दूर से आया आबूझमाड़ से, वो आया है वो देखा और वो 4-5 के वही खा लिया। अरे ऐसा मत करो, बच्चों को बीमारी से मुक्त करने के लिए सब अभियान चल रहा है और वो चिक्की अब दूसरे लोग खा रहे हैं। आबूझमाड़ में आपको काम करना है तो इस समस्या से आपको जूझना पड़ेगा कि कोई भी चीज गंभीरता से नहीं लेते, उनको गंभीरता लानी पड़ेगी, चेतना जागृति उसके बाद ये सारे कार्यक्रम। तो आबूझमाड़ में अपने मेडिकल सर्विसेज पहुंचाना आज भी बहुत बड़ा चैलेंज है।
1: जी जी, आपने देखा महिलाएं काफी ज्यादा एनेमिक होती हैं, खासतौर पर आदिवासी समाज में सिकल सेल की भी समस्या है, इसको आप लोगों ने कैसे एड्रेस किया?
0: वही बात मैं फिर से बताऊंगी कि जो अभी भी पहुंच विहीन गांव है, आपको रोड साइड के गांवों में जहां तक ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन की सब सुविधाएं अभी पहुंच रही है वहां की महिलाएं जागरूक हो रही है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कर रही है, मितानिन जो बता रही है उसको समझ रही है, आगे अपने जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है उनका भी वो सुनती है, कुछ कुछ टीकाकरण है वो सब करती है। लेकिन अंदर में अभी भी दुनिया का ही प्रभाव है और वो अगर आते भी है तो भी बूढ़े लोग वहां पर है। अभी जैसे हमारा नारायणपुर रोड पर जो बोतली घोटिया हराकोडेर वगैरह गांव है वहां पर ये चलता है उनके जो, क्योंकि वो तो बस्तर जिला पड़ता है वहां से, लेकिन फिर भी वहां से नर्स और ये लोग आते हैं वेलनेस सेंटर करके आजकल जो कल्पना सरकार ने ये की है, तो उनके पास गोली वगैरह मांगने, लेकिन वही पुराने ही मतलब जो बुजुर्ग पुराने नहीं बुजुर्ग जो है वही बार बार आते हैं। मेरे बच्चे को वहां पर समय पर ले जाना चाहिए और ये करना चाहिए, ये बहुत ही कम होता है। बस कुछ गांवों में हमारे कारण जो है वो ये हुआ है, चलो भाई कम से कम मलेरिया जो जांच है वो तो करो। आपको लगता है ना कि बच्चे का मलेरिया उसको कैसा हो रहा है, उनको समझाया हमने और वो वेलनेस सेंटर में आके कम से कम वहां पर ये करते हैं, नहीं तो पहले तो वो उसके लिए भी दुनिया के पास ही जाते थे।
1: डॉक्टर रामचंद आप लोग इसके अलावा कुपोषण एनीमिया के लिए भी एक अभियान चला रहे हैं इस क्षेत्र में?
2: हाँ, हम लोगों ने माल न्यूट्रिशन एनीमिया एलिवेशन स्कीम मास नाम से अलग से स्कीम बनाई है। उसमें हम लोग जो जंगल का क्षेत्र एकदम आबूझमाड़ या आबूझमाड़ में 5-6 गांव में हमने चालू किया और बाकी क्षेत्र में भी है, जैसे इंद्रावती किनारे का सब इलाका है वहाँ हम लोग एक गांव के 20 बच्चों को चुनते हैं जिनका हीमोग्लोबिन 8 ग्राम परसेंटेज के नीचे है, उन बच्चों को हम चुनते हैं, उनकी पूरी जांच बाल रोग तज्ञ से उसकी पूरी जांच करवा लेते हैं। उसके बाद उसके अदर जो डिसीजेस है वो सब कंट्रोल करने के बाद फिर कृमि का गोली, फिर मलेरिया की ट्रीटमेंट, मलेरिया प्रतिबंधन जो है वो, उसके बाद फलीदाना गुड़ और काला तिल इसका चिक्की और एक चिवड़ा बनाते हैं देते हैं। उसके बाद हम लोग दाल तेल और बाकी मिरी और हल्दी ये सब कुछ, तो ये सारा उनको हम देते हैं। तो मध्यान्ह भोजन उनको करना है, उनका घर का चावल और हमारा दाल और तेल दिया वाला उसका उनको रोज खिलाना है बच्चों को। तो ये कार्यक्रम चलता है।

0: जी बीज भी देते हैं कि सब्जी उगा के वो अपने रोज का जो भोजन है उसमें सब्जी पन्ना डाले, हरे पन्ने का सब्जी डाले। मच्छरदानी लगाते हैं कि नहीं ये भी देखते हैं, क्योंकि मलेरिया के कारण भी खून टूट रहा है। तो हम उस गांव में भी एक मॉनिटर करने के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त करते हैं, और हम इतना तक बोलते हैं कि रात को 10 बजे जाके देखो कि वो बच्चा मच्छरदानी में सोया है कि नहीं सोया है। हम लोगों ने अभी तक 24-25 गांवों में ये कार्यक्रम चलाया, 400 के ऊपर बच्चों को हम लोगों ने इसमें ठीक करवाया है। एक समय हम लोग 1-2 गांव लेते हैं, इस बार हम लोगों ने 4 गांव लिए हैं, माने 80 बच्चों के लिए हम लोग कार्यक्रम चला रहे हैं हम लोग। तो ये हम लोग प्रोग्राम अभी लगातार चल रहा है, 2021 से हम लोग कुपोषण के ऊपर लगातार काम कर रहे हैं। और इसका मैंने विचार बदलो तो नसीब बदलेगा ऐसा बोलते हैं, तो स्कूल में जाके इसी सारे अनुभव हम स्कूल में जाके बच्चों को सुनाते हैं।
1: तो ये थे सुनीता गोड़बोले जी और डॉक्टर रामचंद्र, जिन्होंने अपना पूरा जीवन निस्वार्थ भाव के आदिम समुदाय की सेवा में बिताया है, और उनकी इस प्रेरक बातचीत के जरिए आपने जाना कि हमारी शिक्षा का, हमारी जो जीवन शैली है, उसके क्या दायित्व हैं परिवार और समाज के लिए।
2: अभी आप सुन रहे थे वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज आपने सुनी छत्तीसगढ़ में चिकित्सा क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले श्री रामचंद्र गोड़बोले और श्रीमती सुनीता गोड़बोले के साथ हमारी खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे नरेश मिश्रा।
3: पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी।

0: ପିନ୍ବର୍ଟ କହିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟର ଅଧିକାରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାରେ ନୁହେଁ, ନିଜର ଅଧିକାରକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାରେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଧୀନତା ନିହିତ ଅଛି। ଆକାଶବାଣୀ କଟକ ସମୟ ସକାଳ 6 ବାଜିବାକୁ ଯାଉଛି। ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: ନମସ୍କାର, ଆକାଶବାଣୀ ସମାଚାର କେ ସାଥ ମୈଁ ମନୋଜ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत नॉर्वे को समझौते के तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर निवेश और भारत में 10 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। श्री मोदी कल ओस्लो में भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन में नॉर्वे के क्राउन प्रिंस हाकोन और प्रधानमंत्री योनास बहर स्तोरे भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
2: आज नॉर्वे और भारत के बिजनेस और रिसर्च कम्युनिटी के बीच होना, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। कुछ साथियों को जो सुना, ये सुनकर ये विश्वास होता है कि हमारी पार्टनरशिप की नींव बहुत ही मजबूत है। ये केवल संभावनाओं की नहीं, ये एक प्रूवन पार्टनरशिप है।
1: प्रधानमंत्री ने भारत की तेज आर्थिक प्रगति, युवा शक्ति, निवेशकों के अनुकूल माहौल और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का उल्लेख करते हुए नॉर्वे से मछली उत्पादन, जहाज निर्माण, हरित ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिज और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में अधिक निवेश का आह्वान किया। उन्होंने भारत की हरित ऊर्जा नीति और नॉर्वे की स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने तथा जलवायु वित्तीय सहयोग में वैश्विक नेतृत्व की भी सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारी समुदाय से नए सहयोग क्षेत्रों की पहचान कर आर्थिक साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से भी बातचीत करेंगे।
3: श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुंच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 5 देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, AI साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया है। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के प्रति प्रतिबद्ध है, लेकिन वो परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में देश में वाटर मेट्रो सेवाओं की शुरुआत को लेकर समीक्षा बैठक की। श्री सोनोवाल ने कहा कि केंद्र सरकार पहले चरण में गुवाहाटी समेत 18 शहरों में वाटर मेट्रो सेवा शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वाटर मेट्रो सेवा पर्यावरण अनुकूल और किफायती सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था होगी। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक

0: आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्ले ऑफ में जगह बना ली है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से जयपुर में शाम 7:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी कटक आरंभ करुछ भक्ति गीतर कार्यक्रम वंदना। आज वंदनार प्रथम भक्ति गीत गाई बाग्मी मिश्र। एति बासना करुणा मयिक एति मो अभिलाष कर मते तुम चरण तलर चिरनत दुबघास। गीत रचना भगवान नायक बर्मा।

0: वंदे मातरम।
1: वंदे मातरम
0: एही संगीत सबु भारतीयंक पई केवल एक संगीत नुहे, ए हेउछि देशवासींकर स्पंदन, एक पवित्र मंत्र। स्वाधीनता आंदोलन बेले सबु संग्रामी मानंक पई वंदे मातरम थिला एक जागरण, एक देशात्मबोध प्रेरणार ध्वनि। आबाल वृद्ध वनिता सबु देशवासींक पई ए संगीत हेउछि राष्ट्रीय एकता, शक्ति ओ देश प्रेमर पवित्र आवेग। एही संगीतकु आम देशर महान कवि ओ उपन्यासिक बंकिम चंद्र चटर्जी रचना करिथिले 1875 मसीहा नवेम्बर मास 7 तारिखरे। एबे देश पालन करुछि वंदे मातरम संगीत रचनार 150तम वर्ष पूर्ति। वंदे मातरम अर्थ मा मु तुमको प्रणाम करुछि। एही संगीत 1882 मसीहारे आनंद मठ उपन्यासरे स्थान पाइथिला। 1896 मसीहारे विश्वकवि रवीन्द्रनाथ टागोर एही संगीतको प्रथम थर पई भारतीय राष्ट्रीय कंग्रेसर अधिवेशनरे गान करिथिले। 1905 मसीहा बंगभंग आंदोलन बेले एही संगीत देशभक्तिर एक स्वर पलटिगला। स्वाधीनता आंदोलनरे एहा लोकमानक मध्यरे देशभक्ति ओ एकतार जागरण सृष्टि कला। 1950 मसीहा जानुआरी 24 तारिखरे एहार प्रथम द्विपद राष्ट्रीय गीतर स्वीकृति लाभ कला। गीतरे थिबा सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम आम देशर प्राकृतिक वैभवको वर्णना करे। एही संगीत देशर सांस्कृतिक ओ राष्ट्रीय जागरणरे गभीर प्रभाव पकाए। आजि मध्ये एही गीत देशर एकता, निष्ठापरता ओ मातृभूमि प्रति श्रद्धार अमर प्रतीक हे रहिछि।

0: मेरे प्यारे देशवासियों, आपके परिवार में अनेक प्रकार के वस्त्र होंगे, अनेक प्रकार के फैब्रिक्स होंगे, अनेक कंपनियों के प्रोडक्ट होंगे, क्या उसमें एक खादी का नहीं हो सकता क्या? मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि कम से कम एक चीज, भले हैंडकरचीफ हो, भले घर में नहाने का तौलिया हो, भले हो सकता है बेडशीट हो, तकिए का कवर हो, पर्दा हो, कुछ तो भी हो, अगर परिवार में हर प्रकार के फैब्रिक का शौक है, हर प्रकार के कपड़ों का शौक है, तो एक ये भी तो होना चाहिए। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप खादी का वस्त्र खरीदते हैं तो एक गरीब के घर में दिवाली का दिया जलता।
1: आकाशवाणी कटक परवर्ती कार्यक्रम रिले करी प्रचार करू छु आकाशवाणी दिल्ली रो।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भारत ईएफटीए समझौते के तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश और 10 लाख नौकरियों के सृजन का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में सभी 5 नॉर्डिक देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत का मजबूत आत्मविश्वास

0: विश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को रिपोर्ट सौंपी। पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्तीय अनियमितता मामले में आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नॉर्वे को व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत 100 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश लक्ष्य को प्राप्त करने और भारत में 10 लाख रोजगार सृजित करने के लिए प्रयास करने चाहिए। प्रधानमंत्री कल ओस्लो में आयोजित भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। क्राउन प्रिंस हकॉन और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनिस गहरस्तुर भी इस शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते टीईपीए के लागू होने के बाद द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
1: यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूनिक और स्पेशल एग्रीमेंट हमारे बीच टैलेंट, टेक्नोलॉजी और म्यूचुअल ट्रस्ट का एग्रीमेंट है। इसी एग्रीमेंट के माध्यम से एफ्टा कंट्रीज से भारत में अगले 15 वर्षों में 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत के हरित परिवर्तन पर बल देते हुए देश के विकास, बढ़ती ऊर्जा मांग, जलवायु प्रतिबद्धताओं और नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रिड अवसंरचना, हरित हाइड्रोजन और स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार का उल्लेख किया।
1: 2030 तक हमने 500 गीगावाट क्लीन एनर्जी और 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का टारगेट रखा है। क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट नॉर्वे वेल्थ फंड की भी प्राथमिकता है। मैं नॉर्वे को भारत के क्लीन एनर्जी फ्यूचर में अहम हिस्सेदार बनने के लिए आमंत्रित करता हूं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारिक समुदायों से नई साझेदारियां बनाने, सहयोग के उभरते क्षेत्रों की पहचान करने और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने का आग्रह किया। शिखर सम्मेलन में 50 से अधिक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और भारत तथा नॉर्वे के व्यापार और अनुसंधान समुदायों के 250 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया। विदेश मंत्रालय के सचिव पश्चिम सिबी जॉर्ज ने प्रेस वार्ता में इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के हरित और समुद्री अर्थव्यवस्था में साझेदारी से अधिक निवेश आएगा, रोजगार सृजित होगा और भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा सहित सतत ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकेगा।
2: Recognizing the ambitious
3: भारत के महत्वाकांक्षी समुद्री अमृतकाल विजन 2047 को मान्यता देते हुए दोनों नेताओं ने जहाज निर्माण, हरित जहाज रानी, जहाज पुनर्चक्रण, बंदरगाह अवसंरचना का विकास, नाविकों का प्रशिक्षण, मत्स्य पालन, जलीय कृषि और बंदरगाहों के हरितकरण सहित समुद्री अर्थव्यवस्था साझेदारी को बढ़ाने का आह्वान किया है।
2: ग्रीनिंग ऑफ पोर्ट्स।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे की यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। अधिक जानकारी ओस्लो से हमारी संवाददाता से।
4: भारत और 5 नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। टीईपीए लागू होने के परिप्रेक्ष्य में यह शिखर सम्मेलन व्यापार और निवेश संबंधों को अधिक मजबूत करने का प्रयास करेगा। वर्तमान में इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य 19 अरब डॉलर है। तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: प्रधानमंत्री मोदी पांच देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति

0: सर्जियो मत्तारेल्ला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से बातचीत भी करेंगे।
1: रोम पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली में बसे भारतीय समुदाय के सदस्यों से मुलाकात करेंगे, जिनकी यहां उल्लेखनीय उपस्थिति है। वे भारतीय मूल के बच्चों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखेंगे, जिसमें प्रवासी भारतीय समुदाय के बच्चों द्वारा गाया गया एक पंजाबी लोकगीत शामिल है। ये बच्चे रोम के पास स्थित फोंदी कस्बे से आते हैं, जहां उनके माता पिता कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं। ये पंजाबी लोक शैली का गीत एक जट किसान के गर्व, शक्ति और उत्साहपूर्ण जीवन का उत्सव मनाता है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वह परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और यह केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।
4: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पिछले 6 दशकों के दौरान नक्सलवाद के कारण बस्तर को बड़े पैमाने पर जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार अगले 5 वर्षों में करेगी। उन्होंने कहा कि अगले 1.5 वर्षों के दौरान बस्तर में स्थापित सुरक्षा बलों के करीब 200 कैंपों में से 70 कैंपों को जन सेवा केंद्रों में बदलकर उन्हें आदिवासी कल्याण का केंद्र बनाया जाएगा। इन सेवा केंद्रों में बैंकिंग, आधार, राशन कार्ड, कौशल प्रशिक्षण सहित केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। एक रिपोर्ट।
5: उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए लोकसभा अध्यक्ष द्वारा पिछले वर्ष 12 अगस्त को एक समिति का गठन किया गया था। रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में उचित समय पर प्रस्तुत किया जाएगा। न्यायाधीश जांच समिति के पीठासीन अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर और कर्नाटक उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता बीवी आचार्य ने श्री बिरला को न्यायाधीश जांच समिति की रिपोर्ट सौंपी। आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय को मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आधिकारिक आदेश जारी कर निदेशालय को घोष के खिलाफ कथित वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में मुकदमा चलाने की अनुमति दी है। श्री अधिकारी ने कहा कि पूर्व की तृणमूल कांग्रेस सरकार ने इस मामले की जांच प्रक्रिया को लंबे समय तक जबरन और अनैतिक रूप से रखा था। ये मामला एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या से भी संबंधित है। सीबीआई ने 29 नवंबर 2025 को आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में आरोप पत्र दाखिल किया था। अमरीका ने समुद्र में पहले से मौजूद रूस के तेल पर प्रतिबंधों की

0: छूट की अवधि को एक महीने के लिए बढ़ा दिया है। अमेरिका के वित्त विभाग ने कल एक आदेश जारी कर 17 अप्रैल या उससे पहले समुद्र में फंसे रूसी तेल पर प्रतिबंधों से मिली छूट की समय सीमा को 17 जून तक बढ़ा दिया है। इससे पहले अमेरिका ने 5 मार्च को एक महीने के लिए रूस का तेल खरीदने पर भारत को प्रतिबंधों से छूट दी थी। कुछ दिनों बाद ये छूट अन्य देशों को भी दी गई, जो 11 अप्रैल को समाप्त हो गई थी। अमेरिका इस वर्ष 30 और 31 अक्टूबर को जॉर्जिया के अटलांटा शहर में G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कल घोषणा की कि इस बैठक में दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के विदेश मंत्री शामिल होंगे, जिससे वैश्विक स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए G20 के मुख्य उद्देश्यों को आगे बढ़ाया जा सके। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बना ली है। चेन्नई में पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 180 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद ने 19 ओवर में 5 विकेट पर लक्ष्य हासिल कर लिया। ईशान किशन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आज जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से शाम 7:30 बजे से होगा। मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में दिन के समय मौसम गर्म और उमस भरा रहने की संभावना है। राजस्थान, विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज रात भी गर्मी बने रहने का अनुमान है। जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में आज बादल गरजने के साथ बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की गई है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
1: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपना शीर्षक बनाया है। दैनिक जागरण लिखता है, अमेरिका प्रतिबंध हटाए या लगाकर रखे, रूस से तेल खरीद जारी रखेगा भारत, सरकार की दो टूक, अपने देश की ऊर्जा जरूरत के हिसाब से तेल खरीदेंगे। हिंदुस्तान ने अमरीकी मीडिया रिपोर्ट के दावे को प्रमुखता दी है। ईरान का नया शांति प्रस्ताव भी खारिज। पंजाब केसरी ने लिखा है, ट्रंप ने युद्ध पूरी तरह खत्म करने के लिए रखी 5 शर्तें, जवाब में तेहरान ने भी 5 शर्तों की सूची थमाई। देशबंधु की खबर है, ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट पर लागू की नई व्यवस्था, स्ट्रेट के प्रबंधन के लिए नया निकाय बनाने की घोषणा की गई है। नवभारत टाइम्स के अनुसार, नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने सोमवार को महाराष्ट्र के लातूर से 10वीं गिरफ्तारी की। सीबीआई का दावा, नीट से 10 दिन पहले मिले थे सवाल। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ में प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा पर विश्लेषण दिया है। नए समीकरणों की उम्मीद शीर्षक से पत्र लिखता है, गहरे भू राजनीतिक संकटों और आर्थिक अनिश्चितताओं के दौर में प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की 6 दिवसीय यात्रा सिर्फ औपचारिक राजनयिक दौरा भर नहीं है, बल्कि इसके व्यापक कूटनीतिक, आर्थिक और सामरिक निहितार्थ भी हैं। दैनिक भास्कर की विशेष खबर ध्यान आकर्षित करती है, स्मार्ट से उबे लोग, बेसिक चीजों में सुकून की तलाश, जो गैजेट चुपचाप काम करे अब वही ज्यादा समझदार।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भारत EFTA समझौते के तहत 100 अरब डॉलर अमरीके निवेश और 10 लाख नौकरियों के सृजन का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में सभी 5 नॉर्डिक देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत का मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्तीय अनियमितता मामले में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कॉल्स फॉर 100 बिलियन यूएस डॉलर इन्वेस्टमेंट एंड 1 मिलियन जॉब्स अंडर इंडिया EFTA एग्रीमेंट एट बिजनेस एंड रिसर्च समिट इन ओस्लो, नॉर्वे। Prime Minister Modi to meet leaders of all 5 Nordic nations at 3rd India-Nordic Summit today. Defense Minister Rajnath Singh describes Operation Sindoor as testament to India's transformation into strong, confident and capable nation.

थरुटिए स्मृतिपट लेउटे देखिले जीवनटा केउ कथावस्तुर कहानीर कथावस्तुर कम नुहे जन्मर मृत्यु चाहिँ असंख्य अनुभूति संघर्ष स्वप्न आशा अभिलाषा पुणि विच्छेद विरह त्यागर कहानी मुहरी लेखा संलाप समय अनुसार चरित्र परिवर्तन सहित आपे लिखि हुई दिन परे राति रसी संलाप सब राति शेष फर्द शेष पुणि आरंभ नुआ सूर्य सहित एक नूतन प्रष्ठा रचिचे कीते कथा दिन तमाम से कथा को नहीं सी अनुभूति अनुभव पुणि करुवा प्रत्येक कार्य को नहीं साउटुवा से स्वप्न को नहीं लेखा हुई आउ एक प्रष्ठा बर्षे लेउटी जाए अध्याय पुणि जीवन आउ एक अध्याय बंची आग को पुण्यच्छेद पढ़िले बास सेठी पृष्ठा शेष श्रोताबंधु बहिर दृश्य पर जीवन प्रत्येक पृष्ठा निये नुआ मोड़ बाल्यर चपलामी शिशु समय सुनेली पृष्ठा मां बापा भाई भौनी परिवार सहित बीतेथिबा से अमूल्य बेल से अमूल्य समय निष्पाप ओठर हस पुणी घटिथिबा घटना कहानी से रास्ता कैसर पर्यंत षोलटी पहाच दे फगुण कोटे पुणि मनरे आंकिथिबा से पृष्ठा जदि आज पुणि थरे देखुछे किते कथा अंकि मारुछे अनरे

0: महारानी मंदोदरी।
1: कहा स्वामी?
0: ये कौन रानी? तुम्हें गोपन रे चक्षु लोत को निगाड़ी क्रंदन करुच?
1: केवल क्रंदन करिबा छड़ा मोरे अन्य उपाय कौन अच्छी स्वामी? चाहू चाहू केतेटा दिन भितरे पुओ नाती समस्तंको युद्ध रे हरैली, शेषरे इंद्रजीत परी वीर पुओ मध्य टळी पड़ला। एक कथा आखिरे देखी कान रे सुनी को मां देह धरी रही परिबो स्वामी।
0: ओ स्वर्ग मर्त्य पाताल विजयी रावण रे मन रे मध्य आज आशंका।
1: सब तो शेष होईची, एबे जहां अछि सेतक रक्षा करो स्वामी। तुम्हें श्रीरामंकर शरण भिक्षा कर, जनक नंदिनी सीता को पुणी तांकरी हाथरे टेकी दियो।
0: मंदोदरी, जगत विजयी रावण शरण भिक्षा करिबो चार दशरथ सुत राम निकट रे? असंभव असंभव।
1: स्वामी,
0: रात्र थाऊ ब्रह्मा मोर लंकागढ़ द्वारे, प्रातः गीते स्मरि वेद अध्ययन करे, नारद तुम्बुरा बिना जंत्र बजावंते, निद्राते जीविंस बाहु उठई तुरीते, छत्रधारी चंद्र द्वारी सहस्र किरण, नग्र कटुवाल जम भ्रमे रात्र दिन। बृहस्पति कहे भूत भविष्य विधान, अश्विनी कुमार वैद्य देखई निदान, पवन देवता गृह करे समार्जन, पाक सिद्ध करे विश्वग्रासी हुतासन। ईश्वर करती नृत्य डम्बरु बजाई, दस दिग पाल थांती आज्ञाकारी होई।
1: मु जाने स्वामी, स्वर्ग मर्त पाताल तुम्हें जय करिछ, स्वर्गर देवदेवी गण तुम्हारा अनुचर सेवक।
0: तथापि चार मानव रामचंद्र मोर वंशनाश करिछि, मु ताको उपयुक्त शास्ति न देवा पर्यंत प्राणरे शांति नहीं रानी।
1: ना स्वामी ना, तथापि तुम मनरु भ्रम जाय नहीं, ए वंश नाशर कारण राजीव लोचन रामचंद्र नुहंती, सती सीता।
0: मंदोदरी,

बार बार से वाक्य कर उच्चारण जगत जयी बोली मते के न जाने त्रिभुवने शत्रु शरण पुणी पशी भी केशने।

0: बंद कर बंद कर स्वामी ये भयंकर स्वप्न कहानी मुझे कर्ण से श्रवण करी पारु नाही
1: तेबे तुबे कुह प्रिय एपरि स्वप्न देखी मु किपरि स्थिर रहिबि
0: ना स्वामी स्वप्न सत्य हेउ अथवा असत्य हेउ तुम आसंता काली प्रभात रे यात्रा कर लंकापुर सचक्षरे दर्शन कर पितृ राज्य
1: उपयुक्त परामर्श प्रिय आसंता काली प्रभात रे मु यात्रा करबि स्वर्ण लंका
0: एबे विश्राम कर स्वामी
1: ना आउ चक्षुरे जे निद्रा नाही मु सही परि अपलक नेत्र रे अपेक्षा करूची सूर्योदय को
0: मु मध्य तुम सहित निद्रा रहूची स्वामी

0: मु अवगत हेली भगवती तुमे बलिदान रे संतुष्ट हेबो नाही तेबे मु क्षुद्र माछी रूपरे तुम मंदिर रे अवस्थान करूछि जेते बेले राम लक्ष्मण को ए मंदिर को अणा जीव सेते बेले मु तांको कर्ण रे कहि देबी मोर आगमन रो बाणी
1: ओ शेषरी यही दुख भोग करिबा कुथिला छहर असुर महिरावण मोते एवं अनुज लक्ष्मण को बलिदान देव यही मंदिर रे हे भवानी हे शंकरी तुमे कण सते पान करिबो आम रक्त हे बे की बुद्धि करिबा लक्ष्मण

ना ना प्रभु मु माछी रूपरे आपणक निकटरे अवस्थान करूछि आपण मनरु विषाद दूर करंतु प्रभु।

0: रे निर्बोध रामचंद्र सामान्य दंडवत साष्टांग प्रणिपात तो ते जाना नहीं सेइथिरे तू गर्वित योद्धार राजपुत्र बोली तेबे देख एइपरि करिबु तू साष्टांग प्रणिपात
1: जय मा काली।

0: ମଞ୍ଜୁଳା ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଶୁଣିଲେ ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ କଥା ଚିତ୍ରର ଗୀତ ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍ ଜରିଆରେ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନ ଗୋଟାଏ ବାଜିବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ହିନ୍ଦୀରେ ଏବଂ ପରେ ପରେ ଇଂରାଜୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: भारत और पांच नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
1: प्रधानमंत्री आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का दो दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि केवल भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन लोग भी भारत में व्यावसायिक अवसरों की तलाश करने के लिए उत्सुक हैं।
3: इटली के विभिन्न हिस्सों से आए भारतीय समुदाय के सदस्यों के लिए यह अवसर किसी ऐतिहासिक पल से कम नहीं है। शिक्षा, कृषि, डेयरी फार्मिंग, रियल एस्टेट और अन्य व्यवसायिक क्षेत्रों से जुड़े ये लोग दोनों मित्र देशों के शीर्ष नेताओं के बीच होने वाली इस उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक से अपनी अपनी आकांक्षाएं और अपेक्षाएं लेकर आए हैं। भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन नागरिक भी भारत में उभरते व्यवसायिक अवसरों को लेकर उत्साहित हैं। आकाशवाणी के लिए रोम से सुपर्णा भाटिया।
1: भारत और स्वीडन का विश्वास है कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में सहयोग से साझा समृद्धि और सतत भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन द्वारा लिखे गए एक लेख में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितता, ऊर्जा असुरक्षा और आर्थिक बिखराव के समय में दुनिया को फैसला करना है कि वो या तो संकीर्ण राष्ट्रीय सोच की ओर लौट जाए या फिर आपसी सहयोग को सुदृढ़ करे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम से भेंट की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण है। श्री सिंह ने कहा कि भारत और वियतनाम साझा मूल्यों, रक्षा, सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में घनिष्ठ सहयोग साझा करते हैं। श्री सिंह ने हनोई में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की उच्च स्तरीय बैठक शुरू हो गई है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हिस्सा ले रहे हैं। रेलवे ने अरक्कोनम चेंगलपट्टू दोहरीकरण परियोजना के लिए 993 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। चेन्नई उपनगरीय रेल नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला किया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह परियोजना इस मार्ग पर लोगों की भीड़भाड़ कम करने और समय की पाबंदी तथा परिचालन दक्षता में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने

0: अजणा लिंक क्लिक करंतु नाही. सायबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 मने राखंतु. एसबीआई सचेतन रहंतु सुरक्षित रहंतु.
1: अच्छा दास बाबू आपण को घरटा 1970 रे तयार हितला राइट हेले ए पर्यंत एते स्ट्रांग केमि जछि.
2: अरे एटा एकदम सिंपल एवं सैथि पाई मु सेते बेले मोर विश्वास रखि देली एवं आजि मध्य चेटिनाड सिमेंट उपरे
3: शक्ति जहां वर्ष वर्ष नुहे बरम पीढ़ी पाई रही थाए. चेटिनाड सिमेंट सुपर ग्रेड सिमेंट 64 वर्षर दृढ़ मूल दुआ. चेटिनाड सिमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस.

0: And his Swedish counterpart Ulf Kristersson in a joint newspaper article stress on partnerships in times of global uncertainty. Supreme Court refuses to recall its earlier order of keeping sterilized or vaccinated stray dogs in shelters. IMD issues yellow alert for heat wave in national capital for next 3 days. And in IPL cricket, Rajasthan Royals to take on Lucknow Super Giants in Jaipur this evening. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा और व्यापार में सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने समाचार पत्र में एक संयुक्त लेख में वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में साझेदारी पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय का टीकाकरण या नसबंदी किए गए लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के अपने पूर्व के आदेश को वापस लेने से इनकार और मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में अगले 3 दिन के लिए लू का येलो अलर्ट जारी किया। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा, सतत विकास और व्यापार जैसे क्षेत्रों में नॉर्डिक देशों के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के अलावा डेनमार्क, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री भी शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने आज ओस्लो में आइसलैंड की प्रधानमंत्री क्रिस्टन म्यूल फ्रॉस्टडॉटर और फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटरी ओर्पो के साथ द्विपक्षीय बैठक की। और जानकारी के लिए बात करते हैं नॉर्वे में मौजूद हमारी संवाददाता संगीता गोडबोले से। संगीता, नॉर्वे के साथ साझेदारी भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है?
2: कनकलता, नॉर्डिक देश अपनी 90% से अधिक बिजली ग्रीन स्रोतों से उत्पन्न करते हैं। भारत का अपना एक महत्वाकांक्षी ऊर्जा परिवर्तन लक्ष्य है। इसी विषय में नॉर्डिक तकनीकी विशेषज्ञता का लाभ पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोमास जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने में हो जाएगा। हरित भागीदारी की दिशा में उठाया गया सबसे ठोस कदम कल था। इससे नॉर्वेजियन कंपनियां हरित हाइड्रोजन, नीली अर्थव्यवस्था, चक्रीय अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में नवाचार और निवेश कर सकेंगी। भारत एक डेडिकेटेड पवेलियन के साथ नॉर शिपिंग 2027 में भी भाग लेगा। कल व्यापार शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस हिस्सेदारी को बढ़ाकर 25% करने का विजन साझा किया है।
1: धन्यवाद संगीता। भारत और स्वीडन का विश्वास है कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में सहयोग से साझा समृद्धि और सतत भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन द्वारा लिखे गए एक लेख में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितता, ऊर्जा असुरक्षा और आर्थिक बिखराव के समय में दुनिया को फैसला करना है कि वो या तो संकीर्ण राष्ट्रीय सोच की ओर लौट जाए या फिर आपसी सहयोग को सुदृढ़ करे।
3: इस लेख में दोनों प्रधानमंत्रियों ने इस बात का जिक्र किया है कि इस समय जब संयुक्त राष्ट्र अपनी 80वीं वर्षगांठ मना रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और बहुपक्षवाद का महत्व और भी अधिक स्पष्ट हो गया है। दोनों नेताओं ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभु समानता पर आधारित नियमों से संचालित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था ने दशकों तक स्थिरता और विकास सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाई है। लेख में यह भी बताया गया है कि एक प्रमुख विकास इंजन और ग्लोबल साउथ की जिम्मेदार आवाज के तौर पर निकट भविष्य के लिए भारत के दो महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। पहला 2047 तक विकसित देश का दर्जा हासिल करना और दूसरा 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का ये दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के व्यक्तिगत निमंत्रण पर वहां जा रहे हैं। केवल भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन लोग भी भारत में व्यावसायिक अवसरों की तलाश करने के लिए उत्सुक हैं। और जानकारी के लिए बात करते हैं हमारी संवाददाता

0: सुपर्णा भाटिया से जो इस समय रोम में मौजूद हैं। सुपर्णा, प्रधानमंत्री का आज इटली में क्या क्या कार्यक्रम है?
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इटली पहुंचने वाले हैं, जो उनके 5 देशों के दौरे का अंतिम चरण है। इस यात्रा से भारत इटली रणनीतिक संबंधों को कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश और औद्योगिक साझेदारियों से जुड़ी सहयोग योजनाओं की घोषणा होने की संभावना है, क्योंकि दोनों देश आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सहयोग के नए क्षेत्रों की तलाश में हैं। व्यापारिक संबंध पहले से ही मजबूत हैं और इस यात्रा के दौरान होने वाली उच्च स्तरीय वार्ताओं के बाद इनके और आगे बढ़ने की उम्मीद है। मुझे यहाँ भारतीय प्रवासी समुदाय से बात करने का भी अवसर मिला, जो प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर विशेष रूप से उत्साहित हैं।
0: जानकारी के लिए धन्यवाद सुपर्णा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम से भेंट की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण है। श्री सिंह ने कहा कि भारत और वियतनाम साझा मूल्यों, रक्षा, सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में घनिष्ठ सहयोग साझा करते हैं। श्री सिंह ने हनोई में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। दोनों पक्षों ने समुद्री सुरक्षा, रक्षा उद्योग, प्रशिक्षण और क्षेत्रीय स्थिरता में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग से मुलाकात के लिए चीन की यात्रा पर हैं। क्रेमलिन के अनुसार दोनों नेता आर्थिक सहयोग और प्रमुख क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये यात्रा चीन रूस मैत्री संधि के 25वें वर्षगांठ के मौके पर आयोजित की गई है। ये वार्ताएं ऐसे समय में हो रही हैं जब वैश्विक भू राजनीतिक तनावों के बीच चीन, अमरीका और रूस दोनों के साथ अपने संबंधों को संतुलित करने का प्रयास कर रहा है। यूक्रेन संघर्ष को लेकर पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद चीन रूस का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और रूसी तेल तथा गैस का प्रमुख खरीदार बना हुआ है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। एक रिपोर्ट।
2: न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। अदालत ने बच्चों, बुजुर्गों और राह चलते लोगों पर कुत्तों के हमलों की बेहद चिंताजनक घटनाओं का हवाला देते हुए कहा है कि यह समस्या हवाई अड्डों और आवासीय कॉलोनियों सहित संवेदनशील सार्वजनिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। पीठ ने चेतावनी दी है कि निर्देशों का पालन न करने वाले अधिकारियों को अवमानना और अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: भारतीय रेलवे ने जम्मू श्रीमाता वैष्णो देवी कटरा खंड पर 238 करोड़ रुपए की लागत से महत्वपूर्ण ढलान स्थिरीकरण, सुरंग पुनर्निर्माण और पुल संरक्षण कार्यों को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णो ने कहा कि ये कार्य देश के कुछ सबसे चुनौतीपूर्ण भूभागों में सुरक्षित और विश्वसनीय संपर्क सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। रेलवे ने अरक्कोनम चेंगलपट्टू दोहरीकरण परियोजना के लिए 993 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। चेन्नई उपनगरीय रेल नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला किया गया है। रेलवे ने 54 किलोमीटर लंबे क्यूल झाझा तीसरी लाइन प्रोजेक्ट को 962 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री ने कहा है कि ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हावड़ा दिल्ली कॉरिडोर पर क्षमता को बढ़ाएगा और रेल सेवाओं की समय की पाबंदी और ऑपरेशनल लचीलेपन को बेहतर बनाने में मदद करेगा। सेना प्रमुख जनरल उपेन्द्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर को स्मार्ट पावर का एक सटीक उदाहरण बताया है। वे आज राष्ट्रीय राजधानी में सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज में सुरक्षा से समृद्धि, सतत राष्ट्रीय विकास के लिए स्मार्ट पावर विषय पर आयोजित एक सेमिनार को संबोधित कर रहे थे।
3: ऑपरेशन सिंदूर डिलीवर्ड मिलिट्री प्रिसिशन इंफॉर्मेशन कंट्रोल.
4: ऑपरेशन सिंदूर ने सटीकता, सूचना नियंत्रण, कूटनीतिक संकेत और आर्थिक संकल्प को सुसंगत राष्ट्रीय कार्रवाई के रूप में प्रस्तुत किया. इसने दुश्मन पर गहरा प्रहार किया और आतंकी ढांचे को ध्वस्त कर दिया तथा एक लंबे समय से चली आ रही रणनीतिक धारणा को भी तोड़ दिया. सेना ने फिर इसके बाद सोच समझ कर विवेक सम्मत ढंग से अपनी कार्रवाई रोक दी. 88 घंटे चला ऑपरेशन सिंदूर स्मार्ट पावर का सबसे पूर्ण और सटीक उदाहरण था.
3: स्मार्ट पावर इन इट्स मोस्ट

0: complete expression.
1: मिजोरम में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो गया है. मिजोरम के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ. लाल रोजामा ने कहा कि संशोधन प्रक्रिया के दौरान अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की आवश्यकता है क्योंकि अधिकारी सीधे तौर पर मतदाता सूचियों का काम संभालेंगे. उन्होंने अधिकारियों से पूरी ईमानदारी सटीकता और सतर्कता के साथ काम करने का आग्रह किया ताकि मिजोरम के वास्तविक नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें. पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है. दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 98.64 रूपये प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत 91.58 रूपये है. मुंबई में पेट्रोल 107.59 रूपये और डीजल 94.08 रूपये प्रति लीटर बिक रहा है. कोलकाता में पेट्रोल की कीमतें 109.70 रूपये और डीजल की 96.07 रूपये दर्ज की गई, जबकि चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 104.49 रूपये और डीजल की 96.11 रूपये प्रति लीटर है. ये बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और होर्मुज जलडमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है. उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता भुवन चंद्र खंडूरी का आज एक निजी अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया. वे 91 वर्ष के थे. सेना के पूर्व मेजर जनरल रहे श्री खंडूरी ने 2 बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री भी रहे. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन को एक अपूर्णीय क्षति बताया है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री खंडूरी के निधन पर शोक व्यक्त किया है. ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं. ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @SIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं. ये आकाशवाणी है. मौसम विभाग ने दिल्ली, मध्य प्रदेश, पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है. बिहार और मराठवाड़ा में भी आज ऐसी स्थिति रहने की संभावना है. पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में अगले 5 दिन तक लू चलेगी. मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिन के लिए भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है. विभाग के अनुसार दिन के समय दिल्ली में कुछ स्थानों पर भीषण गर्मी पड़ने की आशंका है. एक रिपोर्ट.
2: विभाग के अनुसार दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. कल मौसम विभाग के रिज क्षेत्र स्टेशन पर 44.6 डिग्री सेल्सियस, सफदरजंग स्टेशन पर 43.4 डिग्री सेल्सियस, लोदी रोड स्टेशन पर 43.8 डिग्री सेल्सियस और पालम स्टेशन पर 43.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था. प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह.
1: उत्तर प्रदेश में अगले सप्ताह भीषण गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में बांदा 47 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ लगातार दूसरे दिन भी देश का सबसे गर्म स्थान रहा.
3: आज भी राज्य भर में भीषण गर्मी और लू की स्थिति बनी हुई है. बुंदेलखंड और अन्य इलाके तेज धूप और झुलसा देने वाली हवाओं की चपेट में हैं. धीमी हवा के कारण उमस और बढ़ गई है, जिससे राज्य के कई हिस्सों में सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है. वहीं राज्य के कई जिलों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ऊपर बना हुआ है. मौसम विभाग ने 33 जिलों के लिए लू की चेतावनी जारी की है. राज्य के दक्षिणी और मध्य भागों में अगले सप्ताह तक लू के हालात बने रहेंगे. सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि धरती माँ के लिए पूरी मानवता एक परिवार है. सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि संपूर्ण विश्व एक घर की तरह है, जहां हर संस्कृति का अपना महत्व और सम्मान है. IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा. कल रात चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया. इस जीत के साथ ही हैदराबाद ने प्लेऑफ में जगह बना ली है. घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.2% की वृद्धि दर्ज की गई. अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 136 अंक के वृद्धि के साथ 75,451, जबकि निफ्टी 42 अंक बढ़कर 23,692 पर था. अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रौद्योगिकी नवीकरणीय ऊर्जा रक्षा और व्यापार में सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक

0: शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने समाचार पत्र में एक संयुक्त लेख में वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में साझेदारी पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय का टीकाकरण या नसबंदी किए गए लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के अपने पूर्व आदेश को वापस लेने से इनकार। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में अगले 3 दिन के लिए लू का येलो अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ଏତେବେଳେ ଯାଏଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ। ଆକାଶବାଣୀ କଟକ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିପାରିବେ କିଛି ସମୟ ପରେ।

0: अच्छा तो हम चलते
1: हैं। कथचित्र कालिया कंठदान करिसंती आशा भोसले एवं किशोर कुमार।

ककण्ठरे आल्बम समाधि अनुरोधकारी श्रोताहेले कैलाशचन्द्र गिल, नरेशचन्द्र पात्र एवं भारतचन्द्र पात्र महम्मदपुर बिलहाट कटकरू।

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश, आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूं उमंग कार्यक्रम में।
1: और मैं हूं आपका मित्र अजीत। नमस्कार श्रोताओं, आइए सुनते हैं सबसे पहले सुविचार जो हमें भेजा है पुराना तालाब डुमराओं से वलीउल्लाह अंसारी और बेबी पूजा मलिक जी ने।
0: शिक्षा जितनी रोचक होगी सीखना भी उतना ही रोचक और मनोरंजक होगा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
0: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी।
1: नमस्ते।
0: उमंग कार्यक्रम में कहानी जुर्माना सुनी, कहानी पसंद आई। अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला जी पर केंद्रित कार्यक्रम बेहद पसंद आया। कार्यक्रम प्रस्तुति ने दिल जीत लिया। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं। उमंग कार्यक्रम का हर एपिसोड जरूर सुनते हैं। ये कार्यक्रम बेहद पसंद आता है। कहानी लालची कुत्ता, शहीद राम प्रसाद बिस्मिल जी पर केंद्रित मेरी माँ एवं सम्राट अशोक पर प्रसारित कार्यक्रम सुने और पसंद आए। देश विदेश की जानकारी के साथ ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस संदेश के लिए। और अगला संदेश हमें मिला हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदाड़े जी का।
0: साथ ही साथ हमें संदेश प्राप्त हुआ है जालंधर से संदीप कौर, प्रभा कौर और राधिका कौर।
1: और डोंडिया खेड़ा से प्रभा जटोलिया ने लिखा है चेतक कविता बहुत अच्छी लगी, आपको बधाई।
0: चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा लिखते हैं, ये भी जानिए के तहत उड़ान का इतिहास और कल्पना चावला पर जानकारी बेहद अच्छी लगी। आज का कार्यक्रम दिल छू गया। परीक्षा कहानी बहुत अच्छी लगी। विमलेश चौधरी जी और अजीत होरो जी को बहुत बहुत बधाई।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है दिल्ली से रेशमा अंसारी, शकीला अंसारी और सईद अंसारी जी का। और साथ ही साथ बागपत से सुंदर और सुंदरी और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी का। धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए।
0: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए मैं। तो आइए करते हैं शुरुआत एक कविता से।
1: श्रोताओं अंदाजा जरूर लगाइएगा कि यह कविता किस विषय पर है। आइए सुनते हैं कविता।
0: घने पत्तों की छाया गहरी, जंगलों की श्रृंखला घनेरी, प्रतिदिन वर्षा गाती गीत, इस जंगल की यही है रीत।
1: प्रतिदिन वर्षा गाती गीत, इस जंगल की यही है रीत। श्रोताओं आपने अंदाजा जरूर लगा लिया होगा कि हम एक ऐसे जंगल या वन की बात कर रहे हैं जहाँ अक्सर वर्षा होती रहती है। तो विमलेश जी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।
0: जी अजीत जी, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी समुद्र की, आज हम चर्चा करेंगे ऐसे वनों की जहाँ वर्षा होती रहती है, जिन्हें हम वर्षा वन कहते हैं। अजीत जी, अब ये सवाल उठता है कि वर्षा वन किसे कहते हैं या दूसरे शब्दों में इसकी परिभाषा क्या है?
1: जी विमलेश जी, देखिए तकनीकी रूप से वर्षा वन या रेन फॉरेस्ट उसे कहते हैं जहाँ साल भर बहुत अधिक वर्षा होती रहती है
0: जी,
1: और जहाँ हर समय नमी पाई जाती है और साथ ही साथ घने सदाबहार पेड़ पौधों के साथ वन्य जीवन भी बहुत ही समृद्ध होता है
0: जी। एक बात और जोड़ दूं इस सूचना में कि यहाँ वर्षा सालाना औसतन 70 से 80 इंच तक होती है। पृथ्वी के कई वर्षावन तो ऐसे भी हैं जहाँ साल भर लगातार वर्षा होती रहती है, कभी कभी ही रुकती है।
1: लेकिन एक और प्रश्न है विमलेश जी मेरे मन में कि वर्षा वनों में इतनी बारिश क्यों होती है, अन्य जगहों पर क्यों नहीं होती?
0: श्रोताओं को बता दें कि इसकी वजह है वर्षा वनों का भूमध्य रेखा या इक्वेटर के पास होना।
1: तो जरा श्रोताओं को बताइए ना कि इससे फर्क क्या पड़ता है?
0: फर्क ये पड़ता है कि भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्रों में सूरज की किरणें क्षेत्रों पर सीधी पड़ती हैं
1: जी,
0: जिससे भूमि और जल दोनों बहुत गर्म हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं इससे क्या होता है।
1: तो इससे होता यह है कि इस क्षेत्र में भाप बहुत अधिक बनती है, समुद्रों और नदियों से बहुत अधिक भाप बनती है जो भाप आकाश में जाकर बादल बनाती है
0: जी।
1: और जब बादल भारी हो जाते हैं तो वर्षा होती है, इसीलिए इस क्षेत्र में गर्मी और नमी के कारण वर्षा बहुत अधिक होती है।
0: लेकिन श्रोताओं जरूरी नहीं है कि सभी वर्षा वन भूमध्य रेखा के पास ही हों, इसके अलग अलग कारण हैं, लेकिन निष्कर्ष ये निकलता है कि वर्षा वन सबसे अधिक भूमध्य रेखा या पृथ्वी की काल्पनिक मध्य रेखा के आसपास ही पाए जाते हैं। लेकिन निष्कर्ष ये निकलता है कि वर्षा वन सबसे अधिक भूमध्य रेखा यानी पृथ्वी की काल्पनिक मध्य रेखा के आसपास ही पाए जाते हैं। आइए अब जानते हैं वर्षा वनों की और कुछ रोचक बातें।
1: तो श्रोताओं एक बड़ी रोचक बात है वर्षा वनों के बारे में, और वो ये है कि समुद्र के बाद वर्षा वनों को धरती का फेफड़ा भी कहा जाता है
0: जी।
1: ऐसा इसलिए कि सदाबहार पेड़ पौधों के कारण ये वन भारी मात्रा में प्राणवायु यानी ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसके कारण हम सुगमता से सांस ले पाते हैं। वर्षा वन तो क्या, हमें पृथ्वी की सारी वनस्पतियों के प्रति हमेशा आभारी होना चाहिए
0: जी। यही कारण है अजीत जी के

0: चारों वेदों और पुराणों में वनस्पति की स्तुति की गई है। उन्हें नमन किया गया है। पुराणों में विशेषकर पद्म पुराण और स्कंद पुराण में वृक्षारोपण को पुनीत कार्य बताया गया है
1: जी।
0: और इससे पूर्व भी आदि मानव जनजातियां प्रकृति की पूजा करती रही हैं। हड़प्पा संस्कृति में भी वृक्षों को विशेष आदर दिया गया है। चलिए श्रोताओं, अब जानते हैं अजी जी से वर्षा वनों की एक और बहुत रोचक बात।
1: जी विमलेश जी, श्रोताओं, एक और रोचक बात वर्षा वनों की ये है कि ये जैव और वनस्पति विविधता के अद्भुत भंडार हैं। यानी जितने पेड़ पौधे, जीव जंतु और अनोखे सूक्ष्म जीव इन वर्षा वनों में पाए जाते हैं, उतने कहीं और नहीं पाए जाते
0: जी।
1: तो अब एक और रोचक बात जानते हैं विमलेश जी से।
0: जी श्रोताओं, आपने ऊंचे से ऊंचे पेड़ देखे होंगे, लेकिन वर्षा वनों के पेड़ों की ऊंचाई का तो कहना ही क्या। कुछ वर्षा वनों के पेड़ 40 से 60 मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं। और हाँ, ये पृथ्वी के तापमान और जलवायु को संतुलित रखने में अहम भूमिका निभाते हैं।
1: तो श्रोताओं, ये थी सामान्य जानकारी वर्षा वनों की। श्रोताओं, वर्षा वन तो क्या, सभी वनों का यही संदेश है कि हमें ना काटो
0: जी।
1: जितना हो सकता है पेड़ लगाओ, वरना एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें शुद्ध हवा के लिए और फिर सांस लेने के लिए भी तरसना होगा।
0: जी हाँ, कल नहीं परसों नहीं, लेकिन आज ही अवसर है संभलने का और पेड़ों को बचाने का। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से।
1: तो आज का प्रश्न है, अधिकांश वर्षा वन पृथ्वी के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लें।
0: अधिकांश वर्षा वन पृथ्वी के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं।
1: 8800440559 यानी हमारे IVRS नंबर और audio@cit.nic.in यानी हमारे ईमेल पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओ, बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम बैंगनी जोजो।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें एक प्यारे डॉगी की रोचक कहानी है। वो एक पेड़ के नीचे सो गया था और जब जगा तो उसने देखा कि उसका सारा शरीर बैंगनी रंग का हो गया है। लेकिन क्यों, आइए जानते हैं एक मजेदार कार्यक्रम के माध्यम से।
1: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है NCERT की कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सारंगी के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम बैंगनी जोजो।
2: जोजो एक सफेद कुत्ता था। वह एक पेड़ के नीचे सो रहा था।

0: वो जग गया।
1: किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
0: उसने देखा एक बादल को आकाश में धीरे धीरे चलते हुए।
1: बादल बादल, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
2: नहीं, मैं तो सफेद हूं।
0: बादल हट गया। जोजो ने ऊपर सूरज को देखा।
1: सूरज सूरज, क्या तुमने मुझे दिए बैंगनी धब्बे?
2: नहीं, मैं तो पीला हूं।
3: कौवे कौवे, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
1: नहीं नहीं, मैं तो काला हूं।
3: गुब्बारे गुब्बारे, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
2: नहीं, मैं तो लाल हूं।

0: घास घास क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
1: नहीं, मैं तो हरी हूँ।
2: बेचारा जोजो।
0: किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
3: आहा, तो वो जामुन का पेड़ था।
4: तो बच्चों, सुना आपने? अब जरा याद कीजिए कि जोजो किस किस के पास गया। और कुछ फलों के नाम लिखिए और उनका रंग बताइए। बैंगनी जोजो, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार ममता मलकानी और बाबला कोचर, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक तनु गुप्ता तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। और साथ ही हमारे ईमेल पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। बैंगनी जोजो, अभी आपने सुना यह कार्यक्रम। श्रोता और प्रस्तुत है कार्यक्रम गौरा देवी, एक महान पर्यावरण नेत्री।
5: इस कार्यक्रम में महान पर्यावरण नेत्री गौरा देवी के जीवन और पर्यावरण बचाने में उनके प्रसिद्ध अभियान चिपको आंदोलन की जानकारी दी गई है। ये कार्यक्रम हमें उत्तराखंड के रमणीक राज्य में ले चलता है और वहाँ की पर्वतीय संस्कृति की झलक भी प्रस्तुत करता है।
4: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली महिलाओं के जीवन पर आधारित श्रृंखला छू लूं मैं आकाश।

0: इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम गौरा देवी एक महान पर्यावरण नेत्री।
1: भारत के सबसे रमणीक राज्यों में से एक है उत्तराखंड। इसी उत्तराखंड के चमोली जिले में एक गांव है लाटा। ये गांव विशेषकर बड़े बड़े पेड़ों के कारण जाना जाता है।
2: लाटा गांव के ग्रामीण खेतीबाड़ी और पशुपालन द्वारा अपनी जीविका चलाते थे। दिन भर खेतों और जंगलों में काम करने के बाद जब ग्रामीण शाम को घर आते तो उनके नृत्य और लोक संगीत से सारी घाटी गूंज जाती।
1: इसी गांव में सन 1925 में एक प्यारी सी बालिका ने जन्म लिया। नाम रखा गया गौरा। गौरा का बचपन से ही पेड़ पौधों के प्रति बहुत लगाव था। यदि गांव के बच्चे किसी भी प्रकार से फूल पत्तियों और पौधों को कष्ट पहुंचाते तो वो उन्हें मना करती और उन्हें समझाती भी।
3: मारो, मारो, ठीक से निशाना
4: लगाओ। अरे इंसान की नहीं लगी। अरे
3: नहीं लगा ना? लाओ लाओ, रुको रुको रुको। अरे मैं
5: तुम लोग इस पेड़ पर पत्थर फेंक रहे हो।
3: हा?
5: अभी तो फल भी नहीं लगे। गोविंद, तुम तो सबसे बड़े हो, इनको क्यों नहीं समझाते?

0: अरे पत्थर फेंका है तो क्या हो गया, पेड़ ही तो है ना। देखो
1: मैंने मना किया है ना कि पेड़ पौधों को पत्थर मत मारो, उन्हें चोट लगती है।
2: तुम हमें इस तरह रोका टोका मत करो।
1: मैं तो टोकूंगी और बार बार रोकूंगी।
0: बड़ी आई रोकने वाली।
3: तो साथियों, ये था गौरा का पेड़ पौधों के प्रति लगाव और स्नेह। स्थानीय लोग बताते हैं कि गौरा ने अपने गांव में कई पौधे लगाए थे जो आज भी जिंदा हैं।
4: समय बदला। उस समय की रीति के अनुसार गौरा की शादी मात्र 12 वर्ष की उम्र में पास के गांव रैणी के मेहरबान सिंह के साथ हो गई।
3: सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी शादी के मात्र 10 वर्षों के बाद पति मेहरबान सिंह की मृत्यु हो गई। गोद में 2.5 वर्ष का बच्चा था। पति के निधन के बाद 22 वर्ष की गौरा देवी पर अपने बच्चे और बूढ़े सास ससुर के भरण पोषण का पूरा बोझ आ गया। उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए जितना भी समय गौरा के पास बचता था वो उसे गांव के कामों में लगा देती थी। गौरा अपने गांव के महिला मंगल दल की अध्यक्ष भी बनी।
4: महिला मंगल दल का विशेष काम था गांव की महिलाओं के रोजगार और उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर ध्यान देना। स्त्रियों पर होने वाली घरेलू हिंसा की स्थिति में महिलाओं के समूह द्वारा हस्तक्षेप करना और ये भी सुनिश्चित करना कि ग्रामीण बालिकाओं की पढ़ाई नियमित रूप से चल रही है या नहीं।
5: बहनों, अब हमें ये देखना है कि हमारे गांव में शराबखोरी तो कम हो गई है और इसके चलते चलते आगे बच्चियों की पढ़ाई भी शुरू करनी पड़ेगी हमें।
6: हाँ, बहुत जरूरी है। मेरी बेटी तो पढ़ने जाने लगी है अब।
5: अरे वाह, कितनी अच्छी बात बताई इसने।
7: लेकिन मेरा आदमी तो अभी काम ही पे नहीं जाता।
5: आप तो काम करती है ना?
7: हाँ मैं करती हूँ, लेकिन उसे होता क्या है?
5: मैं तो ये मानती हूँ कि नारी सशक्तिकरण एक बहुत जरूरी अंग है हमारे समाज का। नारी सशक्त बनेगी तभी तो परिवार सशक्त बनेगा।
3: समय बीतता गया। सन 1962 की बात है। चमोली के ग्रामीण अंचल में विकास के लिए तत्कालीन प्रशासन द्वारा सड़क बनाने का निर्णय लिया गया, जिसके कारण गौरा के गांव रैणी और आसपास के गांवों के लोगों की पुश्तैनी जमीन छिन गई।
4: गढ़वाल क्षेत्र के जंगलों में अंगों का पेड़ प्रचुरता में पाया जाता है। खेती करने के लिए पारंपरिक कृषि के औजार अंगू पेड़ों की लकड़ी से बनाए जाते हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों से निवेदन किया कि उन्हें खेती करने के औजार बनाने के लिए अंगू के पेड़ों को काटने की अनुमति दी जाए।
3: लेकिन वन विभाग भला कहां सुनने वाला था। एक ओर वन विभाग ने ग्रामीणों को साफ इनकार कर दिया तो दूसरी ओर जंगल की जमीन का कुछ हिस्सा खेल सामग्री बनाने वाले एक निर्माता को व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए आवंटित कर दिया। अंगू पेड़ों की लकड़ी से उम्दा स्तर की खेल सामग्री भी बनाई जाती थी। दिन था 24 मार्च 1976। इस दिन रैणी और आसपास के गांवों के कुल 2400 पेड़ों को काटने का आदेश दे दिया गया। इन जंगलों को बचाने के लिए लंबे समय से आंदोलन चल रहा था। गांवों के स्त्री पुरुषों ने बड़ी मुस्तैदी से मोर्चा संभाल रखा था और हर परिस्थिति का सामना करने के लिए वे तैयार थे।
4: लेकिन संयोग कहिए कि उसी दिन गांव के लोगों को उनके उन खेतों का मुआवजा दिए जाने का आदेश हुआ जो सन 1962 के अधिग्रहण के कारण उनसे छिन गए थे। रैणी, मलारी और लाता गांव के लगभग सभी पुरुष मुआवजा लेने जिला मुख्यालय चमोली चले गए।
3: इधर पुरुषों की अनुपस्थिति में 100 से भी अधिक मजदूर रैणी और उसके आसपास के गांवों के जंगलों की ओर बढ़ने लगे। गौरा देवी उस समय गांव में ही

0: महिला मंगल दल की स्त्रियों के साथ बातचीत कर रही थीं। उन्हें नहीं पता था कि ठेकेदारों की अगुवाई में मजदूरों का दल जंगल की ओर आ रहा है।
1: और तभी गांव की एक लड़की दौड़ती हुई आई। वो बहुत डरी हुई थी।
2: गौरमा, गौरमा,
3: क्या बात है चंपा? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? कहां से आ रही हो?
2: गौरमा, वो लोग आ रहे हैं।
3: कौन लोग आ रहे हैं?
2: अरे कहां आ रहे हैं, कुछ तो कहो। गौरमा,
3: हाँ,
2: पहाड़ की ओर से ठेकेदार के बहुत से मजदूर जंगल की ओर आ रहे हैं।
3: क्या?
2: हाँ गौरमा, उनके हाथों में कुल्हाड़ियाँ, रस्सियाँ और पेड़ काटने वाली आरी है। मैं बकरी चराने गई थी तो देखा कि 3-4 ट्रक आकर रुके। उनसे मजदूर उतरे और जंगल की ओर बढ़ने लगे।
3: अच्छा, तो ये बात है। बहनों,
4: हाँ गौरमा,
3: चलो हम सब तैयार हो जाएं।
5: बिल्कुल,
3: समय आ गया है अब इस गांव के जंगल को बचाने का।
4: हाँ, हम सब तैयार हैं।
6: किसी भी हाल में जंगल कटने
5: नहीं कटने देंगे।
2: बिल्कुल नहीं कटने देंगे।
0: और चल पड़ी गौरा जंगल की ओर। उसके साथ गांव की 27 स्त्रियां थीं। उनकी चाल में दृढ़ता थी, आंखों में संकल्प झलक रहा था और उनके नारों में ऊंच था।
3: ये है जंगल के उपकार,
4: मिट्टी पानी और बयां,
3: मिट्टी पानी और बयां।
1: और अब वो स्त्रियां वहां पहुंच गईं, जहां मजदूर पेड़ों को काटने के लिए तैयार खड़े थे।
7: अरे क्या कर रहे हो? मुंह के ताक रहे हो? बजाओ शुरू, मारो पेड़।
5: अरे भाई कौन है? रुको, इस पर चिपक जाएंगे पेड़ से।
3: अरे ओ हरिया, तू तो इसी गांव का है ना रे? जिस जंगल ने तुझे पाला, पोसा, बड़ा किया, तेरी सारी जरूरतों को पूरा किया, उसे नष्ट करने के लिए कुछ पैसों के लालच में आकर तूने कुल्हाड़ी उठा ली। शर्म आनी चाहिए तुझे।
7: आगे बढ़ो।
5: अरे कहां से?
7: मिनट की बात में बताओ, मैंने तुम्हें पेशगी दी है, पेशगी इस काम के लिए।
5: चिपक जाएंगे, ऐसा नहीं भूलेंगे।
3: आगे बढ़कर तो दिखाओ तुम। एक भी पेड़ को हम हाथ नहीं लगाने देंगे, आज
2: नहीं लगाने देंगे।
3: बहनों, आगे बढ़कर चिपक जाओ पेड़ों से।
4: हाँ, हम चिपक जाएंगे।
7: ठीक है, तो वहां चलो, उन पेड़ों को काटो, चलो।
0: मजदूरों के सामने एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई थी। वे जिस पेड़ की ओर बढ़ते, गांव की स्त्रियां भागकर उसी पेड़ से चिपक जाती। इस संघर्ष में लगभग 4 घंटे बीत गए थे। इस दौरान किसी ने भागकर ये सूचना गांव के पुरुषों तक पहुंचा दी।
1: ये खबर वैसे भी जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। आसपास के गांवों से सैकड़ों की संख्या में लोग जंगल की तरफ आने लगे। स्थिति बिगड़ती देख ठेकेदार और जंगल काटने वाले मजदूर वहां से भाग खड़े हुए।
7: ठीक है, तो वहां चलो, उन पेड़ों को काटो, चलो।
0: बता दें कि इन पेड़ों की कटाई को रोकने के प्रयास में ये आंदोलन 3 साल पहले 1973 में शुरू हुआ था। इसकी नींव सुंदरलाल बहुगुणा, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत और चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में रखी गई थी।
1: इस घटना ने गौरा देवी को चिपको आंदोलन की महान नेत्री बना दिया और इसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई पड़ी।

0: गौरा देवी विश्व मीडिया में चिपको वुमन के नाम से मशहूर हुई। इस घटना का बहुत बड़ा प्रभाव ये पड़ा कि सरकार ने हिमालयी क्षेत्र में आगामी 15 वर्षों के लिए वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया और राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार पर्यावरण मंत्रालय गठित करने पर विमर्श संभव हुआ।
1: जुलाई सन 1991 में 66 साल की उम्र में इस महान पर्यावरण नेत्री का निधन हो गया।
0: एक साक्षात्कार में गौरा देवी ने जंगल के प्रति अपना स्नेह दर्शाते हुए कहा था,
2: ये जंगल हमारी माता के घर जैसा है। यहाँ से हमें फल, फूल और सब्जियां मिलती हैं। अगर यहाँ के पेड़ पौधों को काटोगे तो निश्चित ही बाढ़ आएगी।
1: चिपको आंदोलन अहिंसक आंदोलन था जिसमें ग्रामीणों और गढ़वाल की बहनों ने पेड़ों को कटने से रोकने के लिए उन्हें गले लगा लिया। इस महान पर्यावरण नेत्री को हमारा नमन।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी एक महान पर्यावरण नेत्री। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वनियांकन विकास सांगवान, कलाकार बाबला कोचर, पूनम एस कुदेसिया, ममता मलकानी, प्रज्ञा प्रवीण शर्मा और गीतांजलि, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक कुसुम लता, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप ईमेल पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी। आशा है श्रोताओं ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है, तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: सुनिले एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: କାଢ଼ି ମୋତେ ଡରାଉଛି ମୋ ଶବ ଦିଶୁନ ରାତିରେ ତୁମେ ଦିଶୁନ ରାତିରେ ସେଇ ତୁମେ ଗଲା ପରେ ତୁମେ ଗଲା ପରେ।
1: श्रोता बंधु आमको परवर्ती कविता पठाई गोविंद बेहेरा डांगमाल केन्द्रापड़ शीर्षक मार ममता अतुट अद्भुत मार ममता केडे जमा सरे नाही प्राण पणे मा रक्षा करी थाए निज संतान को धाई दश मास दश दिन गर्भे धरी मृत्यु संगे सीए लड़ी अंत फाड़ी मा जन्म दे थाए निज हाते फुणी गढ़ी छातीरु अमृत पान करी मा करी थाए छोटरु बड़ राति राति केते उजागर होई सही थाए केते झड़ मृत्यु संगे लड़ी बंचाए मा सबु कष्ट जाए सही कानी पणतरे ढांकी रखे मा हृदय रु स्नेह देई हृदय विदारे मर्मतुंत दृश्य मध्य प्रदेश रे जही बुलिबाकु जाई प्राण हराइले काल बैसाखी रे तही किए जानिथिला काल जगीथिला मृत्युर फास पकाई जबलपुर स्थित बारिक ड्याम प्राण गला तुम नहीं दुखत खबर म्रियमाण कला उद्धारकारी पुणी शेष जाए मा संग्राम करी जाईथिला पुणी हारी चार वर्ष शिशु पुत्र को ताहार बंचाई बार से पाई सोलो पोशाक बांधिथिला पुणी हातरे जाबुड़ी नहीं छाड़ी नथिला से पुअर हात को धरीथिला पुणी भिड़ी मा को भी पुअ छाड़ी नथिला प्राण जाईथिला उड़ी अतीब दुखद मर्माहत दृश्य सभी व्यथित करे मा ममतार अतुट बंधन आखिरे मो झरे आखिरे मो झरे।
0: परवर्ती कविताटी पठाई लता हरण काकटपुर कविराज परिडा कवितार शीर्षक तुम्हें आसिबो बोली तुम्हें आसिबो बोली अति आग्रह सहित मो कुटीर को सजाई रखी विभिन्न रंग बेरंगर आलोकमाळारे तुम्हें आसिबो बोली मो आलयर द्वारदेश को रखी उन्मुक्त आशा पोषण करि बसिछि तुमर मो निलय को हेब अबाध प्रवेश जेउठारे नथिब ले समात्र घात प्रतिघातर चिन्हवर्ण विभिन्न प्रकार कुसुमर समाहार रे पुष्पमाल्यटिए धरि मु दण्डायमान अवस्थारे चाहि रहिछि चातक पक्षीटे भळी तुमर आसिबा बाटकु तुमर गळारे पुष्पमाल्य पिंधाई मो कुटीर को नेइजिबि स्वागत करी मो कुटीर को नेइजिबि स्वागत करी तुमे आसिबो बोली।
1: श्रोता बंधु आमको परवर्ती कविता पठाई दिव्यलोचन भारीमल मोटा जंकिया खोर्धारू तांकर शीर्षक जुबवाणी पाई पदे प्रतिदिन संध्या साढ़े पांचटे रेडियो शुणुछु बसी कटक केन्द्र जुबवाणी शुणी आमे हेउछु खुशी जुब समाजर मार्गदर्शी भावे कार्य करे जुबवाणी सबु वर्गर श्रोता मानंकर मन प्राण निए किणी अन्वेषारे वैज्ञानिक आलोचना सहित खेल खबर विज्ञान विचित्र को श्रोता माने करंती बहुत आदर सृजनीर साहित्यिक आलोचना श्रोता लिखित कहानी मन प्राण को पुलकित हो जाए श्रोता कविता शुणी प्रति बुधवार आलोचना करी नुआ नाटक प्रचार श्रोतांकर मन हरण करंती धन्य आम कलाकार विविधा सोपानर कार्य करे जुबवाणी को सुंदर सांप्रतिक घटनार प्रतिक्रिया रखती श्रोता आमर मल्हारे श्रोतागण अनुरोधी प्रचार हुए संगीत फोन कल शुणी संगीत शुणाती हसई जुब जगत जुबवाणी नेक्स्ट्रे क्रीडा कथा होइथाए जणा क्रीडा कथा शुणी जुब समाजक मध्य जागई प्रेरणा।
0: बंधु अहंकार गोटे एमती प्रवृत्ति जो प्रवृत्ति पाखे मरीजाए मनीष पणिया हारिजाए दया क्षमा आउ आदर
1: ठीक कहिलो शीतल सही अहंकार पाई तो मनीष हरई बसे आपणा मनीष मान श्रद्धा सम्मान आपणार मनीष भी यही अहंकार पाई साजी जाती पर
0: हाँ हिमांशु अहंकार एमती एक अग्निशिखा जहाँ प्रथम अन्य को नुहे निज को जल दिए मनीष जिते सफल हुए से भावे मत कही हरई पारे ना कि भूली जाए ए संसार समय ठू बड़ आई ना
1: अहंकार आसिले मनीषर कथा बदली जाए व्यवहार बदली जाए एवं धीरे धीरे ता पाखरु लोक माने मध्ये दूरे जाती गछरे जेते फल थाए से नम्र हो नई जाए किंतु खाली गछ सदा बेले उच्चरे ठिया हुए ठीक से परी ज्ञानी मनुष्य नम्र हुए अहंकारी मनुष्य केवल निजको बड़ भावे
0: जेमिति रावणक पाखरे शक्ति थिला ज्ञान थिला संपत्ति थिला किंतु अहंकार तांकर सबकिछ हरि नै थिला

0: ଶୁଣିଲେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୁବବାଣୀ।
1: कस्टमर केयर तरफ फोन आसीथिला कहुथिले तमरो 50,000 रिवार्ड पॉइंट्स एक्सपायर हेइ जिवो। ए लिंक परथि एपीके डाउनलोड करिनियंतु।
2: ठीक लागुनी, स्कैम भी हेइ पारे।

0: ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ ସେତିକି, ଆପଣମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ ଶୁଣିପାରିବେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ।
1: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
2: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
1: यहाँ होती है सीधी, सटीक और सच्ची खबरें।
2: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहा,
1: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। डीडी न्यूज, केवल खबर, पूरी खबर।

0: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
1: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
0: यहाँ होती है सीधी सटीक और सच्ची खबरें।
1: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहे हैं,
0: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल डीडी न्यूज। केवल खबर, पूरी खबर।
2: आपण माने कार्यक्रम सुनुछन्ति आकाशवाणी कटक केन्द्ररु। शुणन्तु चलित अधिवेशनर कार्यक्रम सम्पर्करे सूचना। गोस्वामी तुलसीदास विरचित श्रीरामचरित मानसर 22तम भाग संध्या 6:10। संध्या 6:30 उदय भारत एथिरे शुणिबे महुमाछि पालन आर्थिक प्रगति एवं परिवेश सन्तुलन। आलोचक प्रोफेसर अजय कुमार पात्र। राति 17:25 जिला हलचल शुणिबे सुंदरगढ़ जिला सम्पर्करे। राति 17:30 कृषि संसार एथिरे शुणिबे खरादिने पशुपक्षीङ्कर जत्न सम्पर्करे डॉक्टर निर्माल्य पतिङ्क सहित आलोचना। राति 8:02 हिंदी चलचित्र गीत। हिंदी शिक्षा कार्यक्रम राति 8:30 शिक्षादान करिबे क्षेत्रवासी त्रिपाठी। अंशग्रहण करिबे रितिका प्रसाद। राति 9:30 साहित्य संसद एथिरे शुणिबे माटीर महाकवि सचि राउतराय शीर्षकरे स्वतंत्र उपस्थापना करिछन्ति डॉक्टर रवींद्र नारायण महाराणा। कविता पृष्ठारे चिरश्री इंद्र सिंह कविता। गल्प पृष्ठारे हिरणमयी मिश्रंक गल्प एवं स्मृति फर्दरे रहिछि पंडित रघुनाथ मुर्मूंक संपर्करे। उपस्थापना एवं संपादना प्रज्ञा पारमिता साहू। राति 10:02 चक्रधर बारिक एवं साथीङ्क परिवेशित दासकाठिया गीत। राति 10:30 श्रोतांक अनुरोधरे ओडिया कथाचित्र गीत।

परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य से ये बात छिपी नहीं थी कि भरद्वाज मुनि श्री रघुनाथ जी की महिमा और प्रभुता से भली भांति परिचित हैं। फिर भी वो श्री राम के रहस्यमय गुण स्वयं उनसे सुनना चाहते हैं। इसी कारण एक मूढ़ की भांति उन्होंने प्रश्न किया है कि भगवान शंकर सहित देव मुनि जिन रामचंद्र का गुणगान करते हैं वे राम कौन हैं? याज्ञवल्क्य ने स्नेह के वश होकर भरद्वाज को तब उमा तथा महादेव के संवाद की कथा सुनाई। एक बार त्रेता युग में शिवजी अगस्त ऋषि के पास गए, साथ में जगत जननी सती भी थी। ऋषि ने शंकर को अखिल विश्व का ईश्वर जानकर उनकी पूजा अर्चना की तथा विस्तार से श्री राम की कथा कही और उनसे हरिभक्ति की महिमा सुनी।

0: पीयूष गोयलः अद्य उद्यम सर्वकारयोः मध्ये व्यापारे सुगमतां वर्धयितुं भारते प्रतिस्पर्धात्मकं वर्धयितुं विकसित भारतं प्रति देशस्य यात्रां च त्वरितं कर्तुं प्रगाढ़ सहयोगस्य आह्वानम् अकरोत्। नवदिल्ल्यां 28,000 भारत व्यापार परिष्कार शिखर सम्मेलने मंत्री भाषमाणः आसीत्। श्री गोयलः अवदत् यत् वर्तमान वैश्विक परिस्थितिः भूराजनैतिक अनिश्चितताः च भारतस्य कृते व्यापार प्रतिक्रियां सुदृढं कर्तुं द्रुततर परिष्कारान् स्वीकर्तुं महत्तर स्थितिस्थापकाया निर्माणं कर्तुं आपूर्ति श्रृंखलाः सुदृढां कर्तुं च अवसरत्वेन द्रष्टव्यम्। रूसदेशस्य राष्ट्रपतिः व्लादिमीर पुतिनः चीनदेशस्य राष्ट्रपतिना शी चिनफिंग वर्येण सह मेलनं करिष्यति। क्रेमलिन इत्यस्यानुसारं उभौ नेतारौ आर्थिक सहयोगस्य विषये प्रमुखेषु प्रादेशिक वैश्विक विषयेषु च चर्चां करिष्यतः। एषा यात्रा चीन रूस मैत्री सन्धेः 25 वर्षाणाम् उपलक्ष्ये आचर्यते। एषा वार्ता तदा अभवत् यदा वैश्विक भूराजनैतिक संघर्षस्य मध्ये चीनदेशः अमेरिकादेशेन रूसदेशेन च सह स्वस्य सम्बन्धान् संतोलयति। यूक्रेन द्वन्द्वस्य विषये पाश्चात्य प्रतिबन्धानाम् अनन्तरम् अपि चीनदेशः रूसदेशस्य बृहत्तमः वाणिज्यिक सहभागी रूसदेशस्य तैल प्राकृतिकेन्धनस्य प्रमुखः क्रेता चास्ति। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य सायं 7:30 जयपुरे राजस्थान रॉयल्स दलं लखनऊ सुपर जायंट्स दलं सम्मुखीकरिष्यति। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु गुजरात टाइटन्स सनराइजर्स हैदराबाद दलानि च पूर्वमेव प्ले ऑफ क्रीडायां प्रविष्टवन्तः। मुंबई इंडियंस लखनऊ सुपर जायंट्स दले स्पर्धातः बहिः गतवन्तः। पंजाब किंग्स राजस्थान रॉयल्स चेन्नई सुपर किंग्स दिल्ली कैपिटल्स कोलकाता नाइट राइडर्स दलानि अधुनापि अंतिम स्पर्धा याम संति। अन्ते मुख्य वार्ताः पुनः एकवारम्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ओस्लो नगरे तृतीये भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलने भागं भजितवान्। यस्योद्देश्यं प्रौद्योगिकी पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा रक्षा व्यापार क्षेत्रे सुसहकारं सुदृढीकरणमस्ति। प्रधानमन्त्रिणा मोदिना स्वीडन देशस्य समकक्षीयेण उल्फ क्रिस्टर्सन इत्यनेन सह संयुक्त लेखे वैश्विक अनिश्चिततावधौ सहभागितायाः विषये अवधानं प्रदत्तम्। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य सायंकाले जयपुरे राजस्थान रॉयल्स दलं लखनऊ सुपर जायंट्स दलं सम्मुखी करिष्यति। इति वार्ताः।
1: अपन माने कार्यक्रम सुनुछन्ति आकाशवाणी कटक केन्द्ररु। प्रचार करछु कार्यक्रम उदय भारत प्रयोजना विनय कुमार सामंतराय।
2: नमस्कार आजर उदय भारत कार्यक्रम को स्वागत आपणंकु।
3: श्रोता बंधु महुमाछी पालन एक लाभजनक व्यवसाय एबेर युववर्ग एही महुमाछी चाष प्रति आकर्षित हेउछंती निजे स्वावलंबी हेबा सह अन्यमानंकु रोजगारर पंथा देखाउछंती जहाद्वारा व्यक्तिगत स्तररे आर्थिक लाभ हेबा सह देशर आर्थिक प्रगतिरे एहा सहायक हेउछि। विशेषकर एही महुमाछी आम परिवेशर संतुलन रक्षा करिबा पई एक बड़ माध्यम एहार सुरक्षा आम मानंकर दायित्व। एही अवसररे आज रहिछि आलोचना महुमाछी पालन आर्थिक प्रगति एवं परिवेश संतुलन ए संपर्करे आलोचना करुछंती प्रोफेसर अजय कुमार पात्र।
4: माननीय प्रधानमंत्री को जो आह्वान घर घर में देसी आउ एबे जो निकटरे से जो बार्ता देइछंती देशवासी को प्रति मितव्यय होबा संचय करिबा एथिरु बुझा जाए माननीय प्रधानमंत्री आम देशवासी को मितव्यय हेबा कहउछंती एवं निज चेष्टारे निज गोडरे ठिया होइ कोनसी कार्य करिया पई कहउछंती तार अर्थ हला आमे अन्य देश उपरे बा अन्य काही उपरे निर्भर न करी आमे निज गोडरे ठिया हबा। आज जो आलोच्य विषय अछि महुमाछी ये गोटे मध्य सही माने उन्नतमूलक कार्य जहाद्वारा कि स्वचेष्टारे सेमाने निजर सबकिछि खर्च सेमाने तुलेइ पारिबे। आम पृथ्वीर अभिवृद्धि मुख्यतः निर्भर करे सबुज उद्भिद उपरे एवं एही सबुजिमार मूल रे रहिछि महुमाछी। କାରଣ ମହୁମାଛି ହେଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଏପିସ୍ ମେଲିଫେରା ଆଉ ଏପିସ୍ ଇଣ୍ଡିକାସ୍। ପରାଗ ସଂଗମରେ ମହୁମାଛିର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କୃଷି ଓ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ

0: ଶୁଣିଲେ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଗୀତ ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ।
1: नमस्ते श्रोताओं, ये आकाशवाणी कटक है। आज की हिंदी शिक्षा में चर्चा का विषय है मुख्य क्रिया एवं सहायक क्रिया। इस बारे में हमें शिक्षा देंगे गुरुजी खेत्रवासी त्रिपाठी और उनके साथ योगदान किए हैं छात्रा रितिका प्रसाद। तो चलिए सुनते हैं मुख्य क्रिया एवं सहायक क्रिया क्या है।
2: गुरुजी प्रणाम।
3: हाँ आशीर्वाद। आओ रितिका बैठो।
2: जी गुरुजी।
3: अच्छा हम पिछले दिन क्या पढ़े थे?
2: समापिका और असमापिका क्रिया के बारे में पढ़े थे गुरुजी।
3: तुम्हें यह सब याद है?
2: जी बिल्कुल याद है।
3: तो बताओ असमापिका क्रिया किसे कहते हैं?
2: असमापिका क्रिया
3: शायद याद नहीं रहा, बता देता हूँ। जिस क्रिया से वाक्य तथा कार्य की समाप्ति का बोध नहीं होता। क्या है?
2: जिस क्रिया से वाक्य तथा कार्य की समाप्ति का बोध नहीं होता
3: उसे
2: असमापिका क्रिया कहते हैं।
3: असमापिका क्रिया कहते हैं। बीच बीच में भूल जाती हो, आगे की ओर ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है?
2: जी गुरुजी।
3: तो ये जो असमापिका क्रिया, इनके एक दो उदाहरण याद है?
2: जी गुरुजी।
3: तो बता।
2: खाकर और आने वाला।
3: ठीक है। अच्छा अब समापिका क्रिया के एक दो उदाहरण दे सकती हो?
2: जी।
3: तो बता।
2: घोड़ा दौड़ता है।
3: घोड़ा दौड़ता है तो इस वाक्य में तो समापिका क्रिया किसे कहोगी?
2: दौड़ता था।
3: नहीं नहीं तुमने कहा था कि घोड़ा दौड़ता है तो यहाँ पर समापिका क्रिया बनती है दौड़ता है, ठीक है? तो दूसरे वाक्य में क्या उदाहरण लोगी?
2: राम घर जाएगा।
3: राम घर जाएगा तो इस वाक्य में तो कौन सी क्रिया है, क्रियापद कौन सी है?
2: जाएगा।
3: जाएगा ये जाएगा कौन सी क्रिया की कोटि में आती है?
2: समापिका क्रिया
3: की कोटि में आती है, ठीक है? तो तुमने याद किया, तुमने पढ़ाई की, फिर भी बीच बीच में चूक जाती हो, तो आगे की ओर जरूर ध्यान देना, अभ्यास करते रहना, ठीक है? ऐसे ही करते रहना।
2: जी गुरुजी, आज हम क्या पढ़ेंगे?
3: आज हम कार्य व्यापार की प्रधानता के आधार पर क्रिया के भेद की चर्चा करेंगे।
2: जी

0: शुरू करें?
1: जी हाँ।
0: तो सुनो, कार्य व्यापार की प्रधानता के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं?
1: दो भेद।
0: एक मुख्य क्रिया और दूसरी है सहायक क्रिया। क्या है?
1: पहला है मुख्य क्रिया और दूसरा है सहायक क्रिया।
0: सहायक क्रिया।
1: यह मुख्य क्रिया क्या है गुरुजी?
0: मुख्य क्रिया, तो सुनो, जिस क्रिया से एकमात्र मुख्य कार्य व्यापार का बोध होता है, सिर्फ एकमात्र मुख्य कार्य व्यापार का बोध होता है, उसे मुख्य क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं?
1: मुख्य क्रिया।
0: किसे कहते हैं?
1: जिस क्रिया से एकमात्र मुख्य क्रिया व्यापार का
0: मुख्य कार्य व्यापार का
1: मुख्य कार्य व्यापार का बोध होता है, उसे मुख्य क्रिया कहते हैं।
0: मुख्य क्रिया कहते हैं, ठीक है?
1: हाँ, मगर कैसे?
0: कैसे तो देखते हैं। जैसे कि अगर हम एक उदाहरण ले लेते तो ये समझ में आ जाएगी। तो देखते हैं, एक वाक्य लेते हैं। मानो ये वाक्य है, वो स्कूल गया। क्या हुआ?
1: वह स्कूल गया।
0: तो बताओ यहाँ क्रिया कौन सी है?
1: यहाँ क्रिया गया है।
0: गया, यहाँ पर गया है क्रियापद, ठीक है? तो ये गया जो क्रिया है, इसका मूल रूप क्या है?
1: यह तो भूतकाल में है गुरुजी।
0: हाँ हाँ,
1: इसका मूल रूप है जाना।
0: सही, सब सही फरमाया। ये जो गया है ये भूतकाल में है, इसीलिए अगर इसके मूल रूप को हम ढूंढेंगे तो हमें जाना तक जाना पड़ेगा। तो गया का मूल रूप है जाना, ठीक है? तो ये जाना ही यहाँ पर मुख्य क्रिया है। कौन सी क्रिया है?
1: मुख्य क्रिया,
0: ठीक है।
1: तो अगर हम कहेंगे
0: हाँ हाँ,
1: चिड़िया उड़ती है,
0: ठीक है,
1: यहाँ पर उड़ना ही मुख्य क्रिया होगी।
0: हाँ बिल्कुल ठीक है। फिर बताओ, अगर हम कहें कि सीता भात खाती है, क्या?
1: सीता भात खाती है,
0: तो मुख्य क्रिया क्या होगा?
1: जी, यहाँ मुख्य क्रिया खाना है।
0: खाना है, ठीक है। अब हम सहायक क्रिया पर चर्चा करेंगे।
1: गुरुजी, सहायक क्रिया क्या है?
0: सहायक क्रिया बताता हूँ, सुनो। जिस क्रिया के द्वारा मुख्य क्रिया में अर्थभेद उत्पन्न करने में सहायता मिलती है, उसे सहायक क्रिया कहते हैं। क्या हुआ?
1: जिस क्रिया के द्वारा मुख्य क्रिया के अर्थभेद उत्पन्न करने में सहायता मिलती है, उसे सहायक क्रिया कहते हैं।
0: सहायक क्रिया कहते हैं।
1: जैसे कि
0: एक उदाहरण लेते हैं। कमला का पत्र पढ़ा गया। क्या हुआ वाक्य?
1: कमला का पत्र पढ़ा गया।
0: हाँ, ये जो वाक्य है इसमें पढ़ना जो है, ये कौन सी क्रिया है?
1: मुख्य क्रिया।
0: मुख्य क्रिया है, ठीक है। तो गया जो है, इसका मूल रूप है
1: जाना।
0: जाना, ये कौन सी क्रिया है?
1: सहायक क्रिया।
0: सहायक क्रिया है, क्योंकि गया ही पढ़ा में अर्थभेद उत्पन्न करती है। अगर गया को हम उससे अलग कर दें तो वाक्य क्या होगा? कमला का पत्र
1: पढ़ा।
0: तो ये पढ़ा जो क्रियापद है, इसमें से पूर्ण शब्द, पूर्ण अर्थ निकल सकती है क्या?
1: नहीं।
0: बिल्कुल अर्थ उत्पन्न करने में ये सक्षम नहीं हो सकती है, इसीलिए ये गया जोड़कर इसी के माध्यम से पढ़ा जो क्रिया है, इसमें से अर्थभेद उत्पन्न करने की क्षमता पैदा की जाती है, ठीक है? आई समझ में?
1: जी नहीं।
0: तो सुनो, अगर हम कहेंगे

0: की कमला का पत्र पढ़ा। दोबारा ध्यान से सुनना हाँ। अगर हम कहेंगे कि कमला का पत्र पढ़ा तो अर्थ उत्पन्न होता है क्या?
1: नहीं तो।
0: लेकिन अगर हम पढ़ा के बाद, किसके बाद?
1: पढ़ा के बाद।
0: पढ़ा के बाद गया जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं?
1: गया।
0: तो अर्थ पूरा हो जाता है।
1: हाँ, गया क्रिया अर्थ प्रकाश करने में सहायता करती है।
0: गया क्रिया अर्थ प्रकाश करने में सहायता करती है, इसीलिए उसे क्या कहेंगे?
1: सहायक क्रिया कहेंगे।
0: ठीक है
1: जी। हाँ,
0: याद रखो कि हिंदी में सहायक क्रियाएं अनेक प्रकार की होती हैं। कितना प्रकार की होती हैं?
1: अनेक प्रकार की होती हैं। क्यों जी?
0: क्योंकि ये मुख्य क्रिया की कई तरह से सहायता करके अर्थभेद उत्पन्न कर सकती है। मुख्य क्रिया की विविध उपाय से सहायता करके अर्थभेद उत्पन्न कर सकती है।
1: जी कैसे?
0: बताता हूँ, चलो कई उदाहरण लेकर इसे समझते हैं। क्या लेंगे? उदाहरण लेंगे, बिना उदाहरण के समझ में नहीं आएगी। जैसे कि एक वाक्य लेते हैं, बच्चा रो रहा है। क्या हुआ?
1: बच्चा रो रहा है।
0: रो रहा है। यहाँ इस वाक्य में मुख्य क्रिया कौन सा है?
1: रोना।
0: रोना है मुख्य क्रिया। तो सहायक क्रिया कौन सा है?
1: रखना।
0: रखना नहीं, रहना, क्योंकि वाक्य है बच्चा रो रहा है। ये रो जो है, रो का जो मूल रूप है क्या है? रोना। रो का मूल रूप क्या है? रोना। फिर से बता।
1: रो का मूल रूप है रोना।
0: रोना। और ये रहा जो है, रहा का मूल रूप क्या है?
1: रहना।
0: रहना। ठीक है, तो रोना है
1: मुख्य क्रिया।
0: मुख्य क्रिया। और रहना है
1: सहायक क्रिया।
0: सहायक क्रिया। तो देखते हैं, इसके माध्यम से कार्य चलने का समय का पता चल जाता है। ये समय का पता देता है। रोते रहना, रो रहा है। ठीक है, ये कार्य चलने की समय की अवधि की सूचना देती है। इसलिए यहाँ पर ये रहना जो है, ये काल सूचक सहायक क्रिया। क्या है?
1: काल सूचक
0: सहायक
1: क्रिया है।
0: ठीक है, काल सूचक सहायक क्रिया किस लिए? क्योंकि ये समय की सूचना देती है। ठीक है, किसकी सूचना देती है?
1: समय की सूचना।
0: समय की सूचना देती है, इसीलिए इसे काल सूचक सहायक क्रिया कहते हैं। ठीक है
1: जी। हाँ गुरु जी।
0: दूसरी क्रिया के लिए हम एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, वो है चिट्ठी भेजी गई। क्या हुआ?
1: चिट्ठी भेजी गई।
0: तो यहाँ पर मुख्य क्रिया कौन सी है?
1: भेजना।
0: भेजना। भेजना किसका मूल रूप है?
1: भेजी।
0: भेजी का मूल रूप है भेजना, और ये मुख्य क्रिया है। और सहायक क्रिया कौन सा है?
1: जाना।
0: जाना। गई का मूल रूप है
1: जाना।
0: जाना। तो ये जाना जो है, यहाँ पर वाच्य सूचक सहायक क्रिया है। क्या है? वाच्य सूचक सहायक क्रिया है।
1: यह वाक्य क्या है गुरुजी?
0: वाक्य नहीं, वाच्य। ये वाच्य, वाच्य के बारे में पूछना चाहती हो तो सुनो, हिंदी में वाच्य जो है ये तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं?
1: तीन प्रकार।
0: तीन प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। क्या क्या?
1: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य।
0: ठीक है, इन्हें हम अलग से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अब बताओ कि ये तीसरे उदाहरण लेते हैं। ये तीसरे उदाहरण में तुम्हें बताना होगा कि क्रियापद कौन सी है और ये क्या काम करते हैं। ठीक है, तीसरा

0: उदाहरण में वाक्य है, शायद उसने पढ़ा होगा। क्या?
1: शायद उसने पढ़ा होगा।
0: शायद उसने पढ़ा होगा। इस वाक्य में मुख्य क्रिया कौन सा है?
1: पढ़ना।
0: पढ़ना। पढ़ा का मूल रूप क्या है? पढ़ना।
1: पढ़ना।
0: और सहायक क्रिया कौन सी है?
1: होना।
0: होना। ठीक है, ये होना जो है ये सहायक क्रिया है, और यहाँ पर ये सहायक क्रिया वृत्ति सूचक सहायक क्रिया के रूप में परिचित होगी, क्योंकि इसके माध्यम से संभावना वृत्ति की सूचना मिलती है। वाक्य क्या कहती है? शायद, शायद उसने पढ़ा होगा। ठीक है, संभावना वृत्ति की सूचना मिलती है, इसलिए यहाँ पर होना जो सहायक क्रिया है ये वृत्ति सूचक सहायक

0: सहायक क्रिया कौन सी है?
1: होना।
0: होना, ठीक है। ये होना जो है ये सहायक क्रिया है, और यहाँ पर ये सहायक क्रिया वृत्ति सूचक सहायक क्रिया के रूप में परिचित होगी, क्योंकि इसके माध्यम से संभावना वृत्ति की सूचना मिलती है। वाक्य क्या कहती है? शायद, शायद उसने पढ़ा होगा, ठीक है। संभावना वृत्ति की सूचना मिलती है, इसलिए यहाँ पर होना जो सहायक क्रिया है ये वृत्ति सूचक सहायक क्रिया का एक उदाहरण है, ठीक है।
1: यानी पढ़ा होगा या पढ़ा नहीं भी होगा।
0: हाँ बिल्कुल सही, ये जो पढ़ाई की बात यहाँ पर की गई है, शायद वो पढ़ा होगा पढ़ा नहीं भी होगा। तो आज तो समय हो रहा है, तो आज की कक्षा को यहीं पे रखते हैं, बाकी की पढ़ाई अगली कक्षा में।
2: सुनिले हिंदी शिक्षा कार्यक्रम, आपण मैंने कार्यक्रम सुनुछन्ती आकाशवाणी कटक केन्द्र रु। परवर्ती कार्यक्रम रिले कर प्रचार करुछु आकाशवाणी दिल्ली रु।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारत और नॉर्डिक देशों ने आपसी संबंधों को हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ नॉर्वे के ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगले महीने होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने रेबीज से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में भीषण गर्मी की चेतावनी दी, दक्षिण क्षेत्र में तेज वर्षा की आशंका। और शुभमन गिल अफगानिस्तान के साथ टेस्ट और एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन के बाद श्री मोदी ने ये बात कही।
4: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक, और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
3: श्री मोदी ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में व्यापार में चार गुना वृद्धि हुई है।
4: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
3: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्नत भागीदारी के जरिए प्रत्येक नॉर्डिक देश की विशेषज्ञताओं का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच अनुसंधान, कौशल विकास और प्रतिभा के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं, स्टार्टअप तंत्र के स्तर पर सहयोग मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं।
4: वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे, और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत हैं कि

0: मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है, और टेररिज्म पर भी हमारा क्लियर और यूनाइटेड स्टैंड है, नो कॉम्प्रोमाइज, नो डबल स्टैंडर्ड।
1: प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण के लिए इटली रवाना हो गए हैं। वे देर रात रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। इटली में भारत के राजदूत वाणी सरराजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सुश्री राव ने बताया कि यह यात्रा समुद्री सुरक्षा, मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं, व्यापार साझेदारियों और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ठोस परिणाम देने का लक्ष्य रखती है और इस दौरान कुछ महत्वपूर्ण समझौतों की घोषणा होने की उम्मीद है। इटली में भारतीय समुदाय के बारे में बात करते हुए भारत की राजदूत वाणी सरराजू राव ने कहा कि भारतीय प्रवासी समुदाय ने डेयरी और कृषि सहित कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय की गतिशीलता और कल्याण से जुड़े मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान चर्चा हो सकती है। सुपर्णा भाटिया, रोम से।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। रक्षा मंत्री दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आंग्यो बेक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता रक्षा और सहयोग की समीक्षा करेंगे तथा द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नई पहलों की तलाश करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। श्री प्रधान ने कहा कि दोबारा परीक्षा सख्त सुरक्षा नियमों के अंतर्गत सुरक्षित, बिना किसी रूकावट के और पूरी तरह से पुख्ता तरीके से आयोजित की जानी चाहिए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग सेंटर में एक और तलाश अभियान चलाकर कथित नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि एक और दिन बढ़ा दी है। उम्मीदवार अब 23 मई तक आवेदन जमा करा सकते हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग देश का सबसे विकसित जनजातीय संभाग बन जाएगा। बस्तर में श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है वर्ष 2031 तक बस्तर के लोगों के औसत आमदनी में 6 गुना वृद्धि करना है। उन्होंने कहा कि बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर अगले 5 सालों के लिए इसके विकास से संबंधित एक वैज्ञानिक प्रारूप तैयार किया है।
2: 19 मई 2026 की ये तिथि है कि जहां से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में संपूर्ण विकास की परिकल्पना को लॉन्च किया जा रहा है। बस्तर के 7 जिले को नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए भारत सरकार के द्वारा यहां पर करीब करीब 200 सुरक्षा कैंप बनाए गए।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने, भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और विकसित भारत की दिशा में देश की प्रगति के लिए उद्योग और सरकार के बीच सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है।

0: नई दिल्ली में एक सम्मेलन में श्री गोयल ने ये बात कही।
1: That we will convert the current situation.
2: हम दुनिया की भू राजनीतिक परिस्थितियों और उनसे जुड़े जोखिमों को तेज सुधारों के अवसर में बदलेंगे। खुद को अधिक मजबूत और लचीला बनाने की तैयारी करेंगे, अपनी सप्लाई चेन को और सशक्त करेंगे और दुनिया जो भी अवसर दे रही है तथा भारत जो अवसर दुनिया को प्रदान कर रहा है उसके पूरे लाभ उठाएंगे। उदाहरण के तौर पर वे 38 देश जो एक के बाद एक मुक्त व्यापार समझौते के ढांचे में शामिल हो रहे हैं।
0: वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का लक्ष्य 2030-31 तक 350 अरब डॉलर का कपड़ा बाजार बनाना है। इसमें 100 अरब डॉलर का निर्यात शामिल होगा। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि टिकाऊ और प्राकृतिक फाइबर ही कपड़ा क्षेत्र के भविष्य को आगे बढ़ाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से उर्वरक प्राप्त करना दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। ओडिशा के भुवनेश्वर में श्री चौहान ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद केंद्र सरकार किसानों के लिए पर्याप्त उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को देखते हुए रेबी से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दे दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजी का दुष्कर्म मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में एक से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। इससे पहले इस मामले में सियालदह सत्र अदालत ने संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने आज फालता विधानसभा क्षेत्र में होने वाले आगामी पुनर्मतदान से अपना नाम वापस लेने की घोषणा की है। भाजपा के नेतृत्व वाली नई सरकार के विशेष पैकेज की उन्होंने सराहना की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष नई दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। रूस ने बताया है कि श्री पुतिन 12 और 13 सितंबर को सम्मेलन में शामिल होंगे। एक साल के अंदर श्री पुतिन की ये दूसरी भारत यात्रा होगी। इससे पहले वो दिसंबर 2025 में भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली आए थे। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में कारीगरों और बुनकरों के एक समूह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से आज राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपनी प्रतिभा दर्शाने के लिए मंच प्रदान करने पर राष्ट्रपति का आभार व्यक्त किया। राष्ट्रपति ने कारीगरों और बुनकरों को सहायता देने की जरूरत पर बल दिया ताकि उनका हुनर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और वे आत्मनिर्भर बन सकें। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 114 अंक गिरकर 75,201 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 32 अंक लुढ़ककर 23,618 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 18 पैसे कमजोर होकर 96.53 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ।
1: मौसम विभाग ने गुरुवार तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। कल पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर में भीषण लू की आशंका है। अगले 2 से 3 दिन के लिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, हरियाणा, मराठवाड़ा और ओडिशा में लू चलने की संभावना है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि 21 मई तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और लक्षद्वीप में तेज बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, बिहार, गंगा के मैदानी, पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा में गरज के साथ तेज हवाओं का अनुमान है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच और 3 एकदिवसीय मैच की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। शुभमन गिल टेस्ट टीम के कप्तान

0: केएल राहुल को उपकप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल एक दिवसीय टीम की कप्तानी करेंगे और श्रेयस अय्यर उपकप्तान होंगे। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ सुपर जायंट्स ने 16 ओवर में 2 विकेट पर 182 रन बना लिए हैं। राजस्थान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और नॉर्डिक देशों ने आपसी संबंधों को हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ नॉर्वे के ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगले महीने होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने रेबी से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में भीषण गर्मी की चेतावनी दी। दक्षिण क्षेत्र में तेज वर्षा की आशंका। और शुभमन गिल अफगानिस्तान के साथ टेस्ट और एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी and I am Subhadra Ramachandran with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says investments from Nordic countries in India rose by 200% in the past decade, attends third India-Nordic summit in Oslo with counterparts from Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark. Education Minister Dharmendra Pradhan reviews preparation for NEET UG re-examination to be held next month. Supreme Court allows euthanasia for rabid and dangerous stray dogs to protect human life. Russian President Vladimir Putin to attend New Delhi BRICS summit in September this year. IMD warns of severe heatwave conditions in northern India, forecast heavy rainfall in southern region. In cricket, Shubman Gill to lead Indian squads in Test and ODI series against Afghanistan. India and the Nordic nations comprising Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland have elevated their bilateral ties to a green technology and innovation strategic partnership. Mr. Modi made the announcement while addressing a joint press meet with leaders of Nordic nations after attending the third India-Nordic summit in Norwegian capital Oslo today.
2: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: Prime Minister Narendra Modi said investments from Nordic countries in India rose by 200% in the past decade.
2: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
1: Prime Minister Modi affirmed that the relations between India and the Nordic countries are set to usher in a new golden era with the recently concluded trade agreements, including trade and economic partnership and India-EU free trade deal. On terrorism, Mr. Modi said the two sides have a clear and united stand, no compromise, no double standards.
2: आज हम सबने मिलकर ग्लोबल इश्यूज पर भी विचार साझा किए। वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे, और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया।

0: आउटकम ऑफ दिस समिट।
1: ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक, और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे। और हमारे बीच इस यूनिक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के गठन से हम स्वीडन की एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस, फिनलैंड की टेलीकॉम और डिजिटल टेक्नोलॉजी, और डेनमार्क की साइबर सिक्योरिटी और हेल्थ टेक को भारत के टैलेंट के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए ट्रस्टेड सॉल्यूशंस डेवलप करेंगे। फ्रेंड, भारत नॉर्डिक साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ हमारे व्यापक रिसर्च और इनोवेशन टाइज भी है। इसे सुदृढ़ करने के लिए हम साथ मिलकर यूनिवर्सिटी, लैब्स और स्टार्टअप इकोसिस्टम के बीच लिंकेजेज बढ़ाएंगे।
0: So the Prime Minister, you know, outlined what a vast connection there is between the two sides, and it has developed over the years, and the specific strengths of each country have been kept in mind when forging these partnerships. How important do you think, you know, this viewpoint is, that what he spoke about, trusted solutions for the whole world, how important is this inclusive concept in today's tumultuous times?
2: Tonuji, you have included a very significant point in this whole discussion, and we need to understand that repercussions of climate change not only impact countries like India or for that matter Nordic region, but it's a big challenge for the entire world. And when we, in particular, when we look at these Nordic countries, because of their geostrategic location, as Norway is also known as gateway to Arctic region, any rise or dangerous rise in sea levels would definitely bring in an existential crisis for these nations. So that's where green transition and adopting clean technology for sustainable development is a prioritized, it's a focused area for these nations. On the other hand, India has been contributing on different multilateral platforms in the area of climate change containment, and that's where India has been, you know, reflecting the voice of not only Nordic nations but other nations also who might face this kind of existential crisis because of climate change. And that's where the central focus of this summit was on building resilient, future ready economies through sustainability, wherein all the states who participated, all the Nordic nations and India, reinforced their commitments to clean growth, highlighted by India and Norway, who yes. upgraded their bilateral ties to green strategic mm-hmm. partnership to yes. collaborate heavily in the area of clean energy, green shipping, mm-hmm. and better, effective, holistic ocean management.
0: Absolutely. And also the Prime Minister spoke about the golden era of partnership, which has started since October 2025 with the Trade and Economic Partnership Agreement and India-EU Free Trade Agreement. Let's listen into what he said.
1: अपने संबंधों को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हमने हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण पहल की है। अक्टूबर 2025 से नॉर्वे, आइसलैंड और अन्य एफ्टा देशों के साथ हमने ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया, और कुछ ही महीने पहले हमने भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, जिसमें डेनमार्क, फिनलैंड और स्वीडन भी भागीदार हैं। इन महत्वाकांक्षी ट्रेड एग्रीमेंट से हम भारत और नॉर्डिक देशों के साथ संबंधों में एक नए स्वर्णिम युग की शुरुआत करने जा रहे हैं।
0: Some statistics show that how our partnership has been growing in last 10 years. Bilateral trade grew 4 times, and the investment in India from Nordic nations has grown 200% in the last 10 years. You think this is going to now increase exponentially with all these efforts being made by the Indian government and the Nordic nations?
2: Definitely, Sonuji, and this is another very important prioritized area for both the sides, wherein trade, investment and different economic agreements have brought together Nordic nations, or for that matter EFTA nations and India together. So in this India-Nordic summit, the discussions also included the increase in momentum between India-EFTA nations. EFTA nations include Iceland, Liechtenstein, Norway, Switzerland, mm-hmm. and we

0: ଶୁଣିଲେ ବେତାର ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ। ସମ୍ପାଦନା ଏବଂ ଉପସ୍ଥାପନା ପ୍ରଜ୍ଞା ପାରମିତା ସାହୁ, ସହ ଉପସ୍ଥାପନା କଳିକା ସାହୁ।
1: यहां खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
2: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
1: यहां होती है सीधी, सटीक और सच्ची खबरें।
2: मैं मन से मानता हूं कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहे हैं,
1: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। डीडी न्यूज, केवल खबर, पूरी खबर।

0: दिन सुंदर घनश्याम हे
1: बाबू एति मात्र मोर अळी सत्य हमा बोइले भद्रा तुम्हें मोर गेधा नंद ये कथा तुम्हें कहे को गल अच्छा तुम भाई को कही तुम कामना पूर्ण निश्चय करी एक कथा कही दिखती से समय सुभद्रा पड़गला सत्य हमा गोड़ तल एक

0: କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन के बाद श्री मोदी ने ये बात कही।
2: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में द्विपक्षीय व्यापार में चार गुना वृद्धि हुई है।
2: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच अनुसंधान, कौशल विकास और प्रतिभा के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं और स्टार्टअप तंत्र के स्तर पर सहयोग मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण के लिए इटली रवाना हो गए हैं। वे देर रात राजधानी रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। इटली में भारत की राजदूत वाणी सर्राजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा का आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। रक्षा मंत्री दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बैक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता रक्षा और सहयोग की समीक्षा करेंगे तथा द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नई पहलों पर चर्चा करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग सेंटर में एक और तलाशी अभियान चलाया। सर्वोच्च न्यायालय ने जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेबीज से संक्रमित और जानलेवा कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय आरजीकर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। भारतीय रेलवे का विद्युतीकरण अब 99.6% तक पहुंच गया है। देश में 69,873 किलोमीटर से अधिक रेल मार्ग का विद्युतीकरण किया जा चुका है। मणिपुर के महान नाटा संकीर्तन गुरु युमनाम जात्रा सिंह को 25 मई को राष्ट्रपति भवन में मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नागरिक अलंकरण समारोह के दौरान यह पुरस्कार प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। कल पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर में भी भीषण लू की चेतावनी है। अगले दो से तीन दिनों

0: तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार और उड़ीसा में लू चलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आपण मने कार्यक्रम सुनुछन्ति आकाशवाणी कटक केन्द्ररु।
2: नमस्कार, वर्तमानर मुख्य संवाद सह मु संतोष कुमार साहू। चाषीमानक मध्यरे सचेतनता सृष्टि पई आसंता पहिलारु देशव्यापी आरंभ हेबो खेत बचाओ अभियान कहिले केन्द्र कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। केन्द्र शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान अध्यक्षतारे नीट यूजी पुनः परीक्षा प्रस्तुति नै बैठक अनुष्ठित। परीक्षाकु संपूर्ण त्रुटिशून्य एवं स्वच्छतार सह करिबा उपरे श्री प्रधान गुरुत्वारोप। आसंताकाली प्रकाश पाइब सीएचएससी द्वारा परिचालित युक्त दुई परीक्षाफल। मध्याह्न 12:30 परिषद कार्यालय विद्यालय और गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड परीक्षा फल पुस्तिका उन्मोचन करिबे। रविधान संग्रह नहीं विधायक आलोचना कले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। गृह निर्माण और नगर उन्नयन मंत्री डॉ कृष्णचंद्र महापात्र अध्यक्षतारे नागरिक सेवा प्रदान कार्यदक्षता और डिजिटल सेवा व्यवस्था अग्रगति समीक्षा अनुष्ठित। एम्स दिल्लीर सहयोग में राज्य में समन्वित जरूरीकालीन और ट्रमा केयर व्यवस्था को सुदृढ़ीकरण नहीं स्वास्थ्यमंत्री डॉ मुकेश महालिंग प्रस्ताव। पूर्तमंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन भुवनेश्वर यूनिट 6 स्थित दुईगोटी रास्ता प्रकल्पर भित्तिप्रस्तर स्थापन करिछन्ते। आम बस सेवा संपूर्ण ईवी हेबा नै नगर उन्नयन मंत्री डॉ कृष्णचंद्र महापात्र सूचना। राज्यर विभिन्न जिल्लारे भोटर तालिकारे स्वतंत्र सघन संशोधन एसआईआर संबंधी बैठक अनुष्ठित होइजैछि। ज्येष्ठ मास कृष्णपक्ष चतुर्थी तिथि आसंताकाली श्रीजीवंक बनकलागी नीति अनुष्ठित हेबो। बनकलागी नीति एक गुप्त नीति होइथिबारु संध्या 6:00 राति 10:00 जाए 4 घंटा पई सर्वसाधारण दर्शन बंद रहिबो। एवं राज्यर वृद्धि पाउछि तापमात्रा। झारसुगुड़ा सर्वाधिक तापमात्रा 44.8 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड। मुख्य संवाद आज पई इतिके। नमस्कार।

0: ଶୁଣୁଥିଲେ ପାରମ୍ପରିକ ସଙ୍ଗୀତର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅତସୀ କୁସୁମ। କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଥିଲେ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଦାସ। ଶିଳ୍ପୀ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶୀ ଗୀତ ବନମାଳୀଙ୍କ ରଚନାରୁ। ସ୍ୱର ସଂଯୋଜନା ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ଭାନୁମତୀ ସାହୁ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଛି 308.6 মিটার ତଥା 972 କିଲୋହର୍ଜ ଯୋଗେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଡିଟିଏଚ୍ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନ୍ ଏଆଇଆର୍ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି।
1: जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। बसों, ट्रकों और एम्बुलेंसों पर अब एक समान 18% टैक्स कर दिया गया है, जो पहले 28% था। एचएस कोड क्लासिफिकेशन की परवाह किए बिना ऑटो पार्ट्स पर अब एक ही 18% टैक्स कर दिया गया है। इस कदम से मैन्युफैक्चरर्स और पार्ट सप्लायर्स की उलझन कम होने तथा सप्लाई चेन आसान होने की संभावना है। दिलचस्प बात यह है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं आया है। सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर 5% की रियायती जीएसटी दर का लाभ उठाते रहेंगे, जिससे वे सबसे कम टैक्स वाले व्हीकल ऑप्शन बने रहेंगे।

0: असंभव असंभव जहांपना दिल्ली सोर साहेब आकबर बंग नवाब औथत्य बरदास्त करें जहां रणहुंकार समग्र हिंदुस्तान थरहर जहां दिन हिलाई संस्कारमूलक पैगाम सारा हिंदू साम्राज्य रक्षणशीलतार मजबूत दीवार को भांगी उग्र देश प्रेमी राजपूत जातिर प्राण से दोस्ती आवाज भरी प्रति विद्रूप ए अवमानना ए चेतावनी अन्याय असंगत आदेश दियंतु जहांपना बंग नवाब ताजा खून रे बंग माटी को आमी लाल करदेबु आदेश दियंतु
1: सेनापति कतुल खान हाथ में तलवार धरी निष्ठुरतार भाषा कही मासूम इंसान रो खून रे खेलिवार तमना नहीं एते बड़ो दुनिया रो मनीष को शासन करा जाई पारे ना आज क्षमता और ताकत जौलस मनीष अंध हो पारे लेकिन काली जेते बड़े एक क्षमता मनीष पाखु चली जीव से मनीष मनीष को जदि अविश्वास कर तेरे विश्वास कर आज बंगर नवाब विश्वासघातकता कला काली ओडिशार राजा जी विश्वासघातकता न कर विषय कह
2: क्षमा करे बादशाह राजा मुकुंद देव नवाब सुलेमान को परी बेईमान आउ अकृतज्ञ हो पारे ना जो देशर ठाकुर जगन्नाथ नदी महानदी दंड बड़ दंड बट कल्प बट श्मशान स्वर्ग द्वार से देशर राजा खूब महत खूब उदार जहांपन्ना
1: सेनापति कतुल खान बंग आक्रमण पाई सेना मान को प्रस्तुत कर जाओ आउ राजा मान सिंह आपण राजा मुकुंद देव को पत्र लिखंतु बंग आक्रमण रे से मोगल सम्राट अकबर को मदद करिवे
2: मु वर्तमान राजा मुकुंद देव को पाखकु सम्राट को परवाना पठेबार व्यवस्था करुछि बादशाह।

0: दुलिया
1: किछि कहिबो
0: ना
1: मु केते दिन हब लक्ष्य करछि तमे अन्य मनस्क रहुछ बंग नवाबकर बुनियादर सब ऐश्वर्य भल पाइबा तम पादरे अजाड़ी देला परे भी मोर जेमती मन हुए सब निष्फल तमको पाइबि पाइपारुनि तमे जेमती मोठू काही केते दूर रे
0: के कहिला दुलिया तमरी पाई तो मुझे सब भूली जाई तमरी पाखे बंदी पड़ रही
1: तमे कौन सतरे मोठ मुक्ति चाह
0: मुक्ति किए न चाहे दुलिया समस्ते समस्ते चाहती मुक्ति
1: मुताहले तमको मुक्ति दउची
0: दुलिया
1: विश्वास कर बंग नवाबर झी हेले भी मु होची हिंदूर स्त्री हिंदू घरर बहु तम मनरे कष्ट देई तमको मु भल पाइबा भितरे बांधी रखिबी काहेकि बहु जन्मर सार्थकता नहीं आज मु तमको पाइची एकैटा दिनर स्मृति के साइथि रखि एई टिकक त्याग कोन मु करि परिबिनी मोर ई हस खुशीर घर दीदीक आखि लुहरे भासी जीवनी जगन्नाथक अभिशापरे पोड़ी चली पाउस होई जीवनी
0: दुलिया दुलिया तमे
1: तमर पद सेविका टिके रुह खाइबार व्यवस्था करुची
0: जगन्नाथ ए परीक्षार शेष केबे जणे मते मुक्ति देवाकू चाहे आउ मु मुक्ति न नै सेई बंदीशाळे रही मनोरमा को बोहू को आउ तुमको भूली जाइछि
1: पानी नियो एठी पूजा तर्पण करिनियो बेळ गड़ी गलाणी अरे ये कौन आज चढ़ु करिबनी
0: ओ मोर भूली जाइथंता
2: असमय तुम पाखु मु आसिबाकू बाध्य हेली कला पहाड़ तुम जानिन दिल्लीश्वर अकबर बंग आक्रमण करिबार फरमान पठिछंती तांक तरफ ओडिसा राजा मुकुंद देव आसुंती बंगला आक्रमण करिबाकू
0: कौन कहिले

0: 哎哎，罗罗罗，你干嘛呢？什么罗？来，걸어게임원자랑도구하고쓰던우
1: 아니바이나면묵디먼답구집이
0: 에묵디먼답구집우아니바이너두또힌두누워아니두과라묵집힌두사스로먹었다에고일라고나묵디먼답구집이아니기치문이야가래가래나너도그냥기치아스리피소보까너기부소부만또콜라이죠우리 프라이스도소부미다너마하리부려소부아무만나고밖에로집우지
1: 엠티초토코타거희보호프라치나보호조가버터만은거덜먹란을버리고싶어이사나타는덜먹고다니티쿠다포럼포라쿠아포만의초토코니바이나
2: 콜콜파피아메디엄초토코토이쥬
0: 아니그
2: 래에레사나타는힘들어서이렇게잘해쥬아아니에저거리에에바르코비덤기오늘너버러가겠지생각
0: 하러이자로이자뭐냐야아니밥이쇼접어너머러다그런가머러하는소리도죽기배머러보는사람죽기아무사도지고로인정돈도또아껴내게잡으러온지기래에고로빠이러고또우라부리말이었죠말한다
1: 아니디어보세뭐까리야바꾸지바꾸못해어느모티나오달라벗전터뭐야저띠빼군치비네띠빼군치비네뭐야
2: 뭐야뭐야뭐야뭐야뭐야뭐야뭐야뭐야뭐야뭐야뭐야뭐야뭐야뭐야뭐야뭐야뭐야뭐야뭐야뭐야뭐야
3: 뭐야뭐야뭐야뭐야뭐야뭐야뭐야बार ठाकुरन का अगर एमिति छोटा काम करे कोटि निरीह लोक उपरे अत्याचार करबा को तमनन को विवेक के बाधा दोनी
2: अरे ए माइक तेरे बड़ तेज है सुरे
0: रोई तो होबनी होबनी तब दिदो अन्ना चारु चंपक को बरना नव नवीन रे दीन दीन बचना तेरी ती धरे ना करो नाम नाम
4: बंद करो बंद करो कौची जानियो बंद

0: तुम पर भी धर्मी स्त्री है परना ता ना धरी डाकिबार अधिकार तमर नहीं से आज विधवा हां हां से विधवा से विधवा
1: मनोरमा ये तुम कौन कलो मनोरमा चुड़ी सब भांगी थला
2: नवाब मूर्ति अमर हस्तगत आसंतु आसंतु
3: शाबाश शाबाश कतुल खान शाबाश एथर तमे देख जगन्नाथ कि कोला पहाड़ किमति तुम स्वागत करती देख
0: ना ना ना ये तुम्हें कौन कलो ये कौन कलो तुम्हें ये तुम्हें कौन कलो
4: भौनी तमे इठी
0: मोरी आखे अगरे हिंदुर आराध्य देवता को तुम स्वामी नहीं गले भौनी
4: खुदा मो निर्बोध ख्याली स्वामी की तुम्हें रक्षा करो
0: तुम छड़ा कहीं रक्षा करी परिबेनी
4: भौनी तुम देह छुई जवाब दौची निश्चय करी मो जीवन दे अबाट रु फेरी आनी हाँ भौनी
0: जगन्नाथ मंदिर पर्व शेष है ये थर तर लक्ष्य बारवाटी दुर्ग गजपति नहांती
4: तमें निश्चित था भौनी से दायित्व मोर हेले तमे
0: ए दुनिया रे मोर के ही नहीं भौनी सब डोरी मोर छिड़ी जाए शेषरे जगन्नाथ डोरी रे बांधी हे बोले ठीक करी थेले हेले हेले सेटा भी आज छिड़ी गला तुम्हें जाओ भौनी तुम्हें जाओ समस्ते गले मते भी जीवा को हबो मते भी जीवा को हबो तुम्हें छुआड़े गले भी जगन्नाथ मु तुम्हारे पचे पचे जीवे तुम छड़ा तुम छड़ा मोरा कति मुक्ति किए अच्छे प्रभु किए अच्छे हे जगन्नाथ हे प्रभु तमे तमको रक्षा कर प्रभु मु पारुनी प्रभु मु पारुनी

0: ଅମ୍ବଡ୍ସମ୍ୟାନ୍ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆର୍ବିଆଇ କହେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ, ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ।
1: कस्टमर केयर तरफ फोन आसीथिला कहुथिले तमरा 50,000 रिवार्ड पॉइंट्स एक्सपायर हेइजिवो। ए लिंक परथि एपीके डाउनलोड करिनियंतु।
2: ठीक लागुनी, स्कैम भी हेइ पारे।

0: ଅଭିଳାଳିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ସ୍ୱରୂପା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ଆରତୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଆଧୁନିକ ଗୀତ।
1: अच्छा दास बाबू आपण घर
2: उत्तर मोर विश्वास रखी आज सीमेंट
3: शक्ति जहाँ बर्ष बर्ष नुहे बर पीढ़ी पाई रही था चेटिनार सीमेंट सुपर ग्रेड सीमेंट 64 वर्ष दृढ़ मूल दुआ चेटिनार सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: ଲୋକଗୀତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଦଣ୍ଡ ନାଚ ଗୀତ।